एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज सोमवार है। विक्रमी संवत शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजा चाहते हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे जगत जननी माँ, तेरी दया और कृपा से ही हमारे सारे काम बनते हैं। अपनी कृपा दृष्टि हम भक्त जनों पर सदैव बनाए रखना। तुझे शत शत नमन।

मनुष्य की पहचान उसकी वाणी, विचार और आचरण से होती है। उसके शब्द उसके संस्कारों और व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। भारतीय अध्यात्म परंपरा की बात करें तो इसमें मन, वचन और काया की शुद्धि को जीवन का आधार माना गया है। जब व्यक्ति के भाव निर्मल होते हैं, उसका चिंतन सकारात्मक होता है और उसका व्यवहार शुभ होता है, तब उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार होता है और निर्मल मन से की गई प्रार्थना सहज ही स्वीकार्य होती है।

सुख और दुख का रहस्य भी हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों में उलझता है, तब वह दुख के कारणों को स्वयं आकर्षित कर लेता है। इसके विपरीत करुणा, मैत्री, सद्भाव और शुभ चिंतन जीवन में सुखद ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। यद्यपि निरंतर सकारात्मक बनी रहना सरल नहीं है, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के विचार स्वतः ही आते रहते हैं। ऐसे में प्रभु का स्मरण ही एकमात्र सहारा है, जो हमें सुख, शांति और आश्रय प्रदान करता है।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, स्वर ए हरिहरन, मिताली बी सिंह के हैं और संगीत सतीश भाटिया का।

लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचान कर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, स्वर ए हरिहरन और मिताली बी सिंह के थे, संगीत सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से अब सुनिए देश गान।

और अब सुनिए कार्यक्रम रूपरेखा। पहले आज की तिथि और टुडेज अपडेट। आज सोमवार है, विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि तदनुसार 15 जून सन 2026। और अब टुडेज अपडेट। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा की यात्रा करेंगे और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी। बर्मिंघम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से करारी शिकस्त दी।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे होगा 8:30। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय आपका जाना पहचाना 10:00 से 11:00 तक। कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आपको मिलाना होगा केंद्र का दूरभाष नंबर 01744221322। आज कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, विषय होगा दांतों के विभिन्न रोग व उपचार। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर माधविका खुराना।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:30 पर। आज इसमें चर्चा का विषय होगा विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। शाम 6:20 पर गीता संदेश में आज आप सुनेंगे 6 अध्याय के श्लोक संख्या 11-15 की व्याख्या। व्याख्या करेंगे डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। किसान भाइयों का कार्यक्रम अन्नदाता होगा शाम 6:30। ग्राम संसार ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:00। कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00।

गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम स्वरांजलि होगा सुबह 9:30 पर, शाम 7:45 पर पेश करेंगे गुलदस्ता गाने नए पुराने। ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:05 पर। शाम 7:30 पर होगा कार्यक्रम जय जवान और रात्रि 10 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चांदनी रातें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा FM बैंड पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुआ चाहती हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, उसके बाद 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगहम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्वकप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता है। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी

0: से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 से 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
3: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे! ओह!
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो...
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
4: सात का पहला सुन।
5: सात एकम सात,
6: सात एकम सात,
5: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
7: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
8: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
8: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
8: अप्पू!
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
8: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
8: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
8: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
8: मैं अभी किसके बारे में

0: बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
3: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
3: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
3: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
3: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
3: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
3: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
3: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
3: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
3: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
3: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
3: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
4: मास्टर जी, नोटिस है।
3: लो।
2: मास्टर जी ने कहा,
3: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में

0: कोटी काट ली।
1: ओए
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया, फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है
3: उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। FM बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम बाजियाए नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार हैं सफदरजंग राणा।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम बाजियाए नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार थे सफदरजंग राणा। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 8:15 बजे अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने

0: आज से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है।

0: पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति

0: की महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. US President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI Impact Summit in February this year. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, and automobile and railway manufacturing. Our correspondent reports that upon his arrival in Bratislava, Mr. Modi was given a warm welcome and accorded a traditional Slovak hospitality.
4: Prime Minister Narendra Modi was received by Slovak Foreign Minister Juraj Blanar upon his arrival in Bratislava last night. Members of the Indian diaspora gathered in Bratislava welcomed him with slogans upon his arrival. Slovak musicians of the Luknisa ensemble performed Vande Mataram on the Prime Minister's arrival. Sri Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome today in Bratislava. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
2: The 52nd G7 summit will begin at Avignon in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. His participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. India is important for the G7 as a premier economic powerhouse, a diplomatic bridge to the developing world, and a strategic anchor in the Indo-Pacific. A report from our correspondent.
5: As the summit gets underway, reducing global imbalances has emerged as the central priority of the host nation's G7 presidency. According to the official summit framework, leaders will deliberate on geopolitical challenges, international peace and security, balanced economic growth, and key global crises during the closed-door sessions beginning today. Prime Minister Narendra Modi will participate in the outreach sessions tomorrow. India's participation in the summit will provide an opportunity to highlight the priorities and concerns of the Global South while contributing to deliberations on key global issues. Ankit Kumar, Akashvani News, Avignon, France.
2: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Commercial flight services from the Noida International Airport located at Jewar

और अब आपको इंतजार होगा आज के सवाल का। साथियों, सवाल पूछने से पहले आपको बताना चाहेंगे रामसर साइट के बारे में। आपने सुना जरूर होगा, रामसर साइट ऐसी आर्द्र भूमियों या जलमग्न क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। ये क्षेत्र जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनका रामसर कनेक्शन क्या है ये भी बताएंगे आपको। अभी आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। आप हमें बताइए, भारत का 100वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? आपको उत्तर देना है 8:45 तक SMS द्वारा। नंबर आप जानते ही हैं, 94-660-21-336। प्रश्न एक बार फिर, भारत का 100वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? फोन नंबर दोबारा सुन लीजिए, 9466021336।

साथियों, आज है वैश्विक वायु दिवस, ग्लोबल विंड डे। 15 जून को यानी आज ही के दिन हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व को उजागर करना और इसके उपयोग को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन EWEA द्वारा की गई थी और बाद में इसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर अपनाया गया। अपना देश भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और गोवा जैसे स्थानों पर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें नवीनकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों पर चर्चा होती है।

साथियों, आज अपने कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न किया था, भारत का 100वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहा ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। और अब ये जानना जरूरी है कि रामसर कन्वेंशन क्या है। यह आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर साइट को घोषित करने का मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक आवासों, दुर्लभ प्रजातियों और जलीय तंत्र की सुरक्षा करना है, ताकि पानी को साफ रखने, बाढ़ को नियंत्रित करने और भूजल का स्तर बढ़ाने में मदद मिल सके। रामसर सम्मेलन की स्मृति में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। और अब उन साथियों के नाम शामिल करते हैं कार्यक्रम में जिन्होंने प्रश्न का सही जवाब दिया है। पहला सही जवाब हमारे पास आया है ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हिसार से, रामधारी अवाना अनाया और ओजस अवाना का। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं फालसंडा जटान कुरुक्षेत्र से विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, खुशप्रीत अम्बली। अगले श्रोता है अश्विनी कराड़िया, कृतिका सुबेदार, अमरनाथ, आप हैं रविदास नगर थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र से। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और इनके साथ हैं विश्वदीप येले। अगला सही जवाब है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, सिर्फ मैसेज किया है। अगले श्रोता है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से। दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, आप हैं बलौदा छत्तीसगढ़ से। बिहार स्टेट से आप हैं डब्ल्यू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार और इनके साथ हैं सोनम वली बेलदार। अगला सही जवाब जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित और दिशानी का। बस स्टैंड मानसा पंजाब से आप हैं जगदीश रायगर्ग, अंजना रानी और इनके साथ हैं विकास गोयल। फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अकमल, आप हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से।

सुधा मूर्ति और के हली बेंगलोर से। अगले श्रोता हैं रायसन से रजनीश बत्रा और कबीर। डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी। अगला सही जवाब है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर का। अगले श्रोता है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और इनके साथ हैं सुभाष योगी। कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू आप हैं कदुआपड़ा जगत सिंहपुर उड़ीसा से। भाणा ब्राह्मणा वाला नरवाना से आप हैं मेघराज शर्मा। अगला सही जवाब मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का। पुराना तालाब से वलीउल्लाह अंसारी। अगला सही जवाब मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, गिरिडीह झारखंड से। भाई रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी आप हैं आखली दीवान मध्य प्रदेश से। डोंडे लोहारा से राधिका बेलदार और प्रभा बेलदार। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी। मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य आप हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से। नरेश मल्होत्रा, नीटू, भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया, खैल बाजार पानीपत से। अगला सही जवाब शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल सपकाल का। आप हैं जगुड़ी से रणधीर बांगड़, युगम और नागल से इंदर राज। अगले श्रोता हैं शास्त्री नगर बीट शहर से, आपने दोबारा उत्तर दिया है, कृपया करके एक बार ही मैसेज करें, हम जरूर शामिल करते हैं सही समय पर सही जवाब को। अगले श्रोता हैं टिया और कृष्णा हिमाचल से। नाहन हिमाचल से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। अगला सही जवाब है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का। पलारी से वीरेंद्र साहू और इनके साथ हैं आशीष साहू। वन बघेरा जिला राजनांदगांव से आप हैं योगेश सारवा और इनके साथ हैं आशा सारवा। अगला सही जवाब राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी का। इनके साथ हैं राघव, आप हैं उगाला अंबाला हरियाणा से। सौराष्ट्र राजकोट से हमारे श्रोता हैं प्रवीण गुजराती, जगदीश गुजराती और हिरेन भाई। अगला सही जवाब है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े का। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से आप हैं सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी, लाडी। अगला सही जवाब है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार का। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। गांव हांडी खेड़ा से आप हैं राधेश्याम शर्मा और इनके साथ हैं इंदिरा शर्मा। अगला सही जवाब सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढींगड़ा, कृतिका, विशु और विजय। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और प्रश्न का सही जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।

साथियों, आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इस दिवस को श्रोताओं मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि हम अपने परिवार और समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं मन और अनुभव में होती है। जब सिर के बाल सफेद हो जाएं और चेहरे पर झुर्रियां आने लगे तो लोग समझ लेते हैं कि जीवन अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये झुर्रियां दरअसल अनुभवों की रेखाएं होती हैं जो एक संघर्षपूर्ण सफल जीवन की कहानी सुनाती है। साथियों, आमतौर पर जब किसी की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तो अक्सर कहा जाता है कि अब वह जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो बुजुर्ग होना या ढलती उम्र वास्तव में उस ऊंचे शिखर पर खड़े होने जैसा है जहां इंसान अपने लंबे और संघर्षपूर्ण जीवन में सुख दुख दोनों को झेल चुका होता है। हर व्यक्ति को यह मंजिल नसीब नहीं होती, इसलिए जो लोग इस उम्र तक पहुंचते हैं वे वास्तव में भाग्यशाली हैं, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनके साथ ऐसे बुजुर्ग हैं। बचपन से लेकर युवावस्था तक मनुष्य का जीवन कई पड़ावों से होकर गुजरता है। बचपन में अज्ञानता और डर होते हैं, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई, परीक्षाओं की चिंता और भविष्य की फिक्र मन को घेरे रहती है। युवावस्था की बात करें तो रोजगार की तलाश, घर परिवार की जिम्मेदारियां और समाज में अपनी पहचान बनाने का संघर्ष शुरू हो जाता है। 40 और 50 की उम्र में आर्थिक और पारिवारिक दबाव बढ़ जाती हैं। इस सारी भाग दौड़ में मनुष्य अपने लिए समय निकालना भूल ही जाता है, लेकिन जब मनुष्य 60 वर्ष की आयु पार कर लेता है तब वह जीवन का एक नया अध्याय शुरू करता है। यह अध्याय उस स्वतंत्रता का द्वार होता है जहां अब न परीक्षाओं की चिंता रहती है और न ही अपने पेशे का तनाव। बच्चों की पढ़ाई, उनके विवाह की जिम्मेदारियां अक्सर इस पड़ाव तक पूरी हो चुकी होती हैं, अर्थात जीवन की दौड़ से हटकर मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। अक्सर समाज बुजुर्ग अवस्था को शारीरिक कमजोरी से भी जोड़ता है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शरीर की ताकत अब पहले जैसी नहीं रहती। कई बार बीमारियां भी इस उम्र में घेर लेती है, लेकिन इस उम्र की असली ताकत शरीर में नहीं मन और अनुभव में होती है। हमेशा यही सोचिए कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और दिल तो हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए।

0: बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मंगल भवन मंगल हारी।
9: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
10: साथियों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में। साथियों, बुजुर्ग वे लोग होते हैं जिन्होंने जीवन के हर रंग को देखा है, खुशी भी और गम भी। अनुभव की यह संपत्ति आज की युवा पीढ़ी के पास नहीं होती। बुजुर्गों के साथ बैठकर बातचीत करने से जीवन की वह समझ मिलती है जो किसी गूगल से भी सर्च करने पर नहीं मिल सकती। वे अपने अनुभवों से नई पीढ़ी को सही राह दिखाती हैं। उनकी सलाहों में समय की कसौटी पर खरे उतरे सबक छिपे होते हैं, इसलिए बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं। हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। वे परिवार के लिए एक वृक्ष की तरह हैं जिनकी छाया में बच्चे और युवा ऐसा सुकून महसूस करते हैं जिसे किसी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। यह भी सत्य है कि बुजुर्ग अवस्था में अकेलापन एक चुनौती बन सकता है, इसलिए परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि वे बुजुर्गों का को सम्मान दें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जहां बुजुर्गों का आदर होता है वहां परिवार में खुशहाली बसती है। बुजुर्ग होना किसी भी तरह का अभिशाप नहीं है। एक दिन इस अवस्था से सभी को गुजरना है, इसीलिए आज आप सम्मान देंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो कल आपको आपका भी ख्याल रखा जाएगा। यह जीवन की लंबी यात्रा का एक सम्मानित पड़ाव है। जो व्यक्ति इस मंजिल तक पहुंचता है वह वास्तव में जीवन के शिखर पर खड़ा होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इस पड़ाव को स्वीकार करें और गर्व से कहें कि हमारे बुजुर्ग ही समाज की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हमेशा उनका ख्याल रखें और उन्हें खुश रखने का प्रयास करें।

मीठे बोल जान मन जब मुस्कुरा के बोल दे तू मीठे बोल जान मन जब मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा ओ सनम ओ सनम।

साथियों, अब बात करते हैं अष्टांग योग की। अष्टांग योग, जिसका शाब्दिक अर्थ है आठ अंगों वाला योग, एक शास्त्रीय समग्र प्रणाली है जिसे ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में परिभाषित किया है। यह शरीर और मन को शुद्ध करने और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाने वाला एक एकीकृत मार्ग है, जिसमें नैतिक मूल्य, अनुशासन, शारीरिक आसन और ध्यान जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इसे आठ क्रमिक चरणों में विभाजित किया गया है, बाह्य अंग और आंतरिक अंग। बाह्य अंग के अंतर्गत आते हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। पहले बाह्य अंगों की बात कर लेते हैं। शारीरिक और सामाजिक सद्भाव के लिए ये जरूरी है। पहला आपको करना होगा, सबसे पहले यम यानी कि नैतिक संहिता, सार्वभौमिक नैतिकता और आत्म संयम, जैसे अहिंसा, सत्यवादिता, चोरी न करना आदि इसमें आते हैं। उसके बाद है नियम यानी कि आत्म अनुशासन, सेल्फ मैनेजमेंट की बात हम अक्सर करते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर हमें इसका पालन करना होगा। और आंतरिक शुद्धिकरण जैसे स्वच्छता, संतोष और अध्ययन। तत्पश्चात आसन यानी कि मुद्रा, एक मजबूत स्वस्थ शरीर बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्थिर मुद्राएं आवश्यक है। उसके बाद हमें करना होगा प्राणायाम यानी कि श्वास पर नियंत्रण, प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करने और मन को स्थिर करने के लिए श्वास का नियमन यानी कि प्राणायाम जरूरी है। और आंतरिक अंग में यानी कि मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक जागृति के लिए हमें करना होगा प्रत्याहारा अर्थात इंद्रियों को रोकना, बाहरी उत्तेजनाओं से मन को अलग करके अंतर्मुखी करना। उसके बाद एकाग्रता यानी कि धारणा, जिसे हम धारणा भी कहते हैं, ये अष्टांग योग का छठा सूत्र है। ध्यान को एक बिंदु या वस्तु पर केंद्रित करना, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, एकाग्रता की वस्तु की ओर निरंतर निर्वार्थ एकाग्रता का प्रवाह। और अंततः समाधि यानी आठवां सूत्र जो अष्टांग योग का है वो है लीनता, समाधि, ध्यान की सर्वोच्च अवस्था जिसमें ध्यान करने वाला और ध्यान की वस्तु दोनों ही एक हो जाते हैं। और साथियों, आजकल अष्टांग शब्द आमतौर पर हठ योग की एक विशिष्ट गतिशील और एथलेटिक शैली को संदर्भित करता है, जिसे अपनाकर हम अपने शरीर और मन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये आपने जाना अष्टांग योग के बारे में।

और अब आज का सुविचार। इंसान की सीखने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता लगातार बढ़ती रहती है। साथियों, इंटरनेट के इस दौर में जानकारी का तूफान हर समय हमारे सामने मौजूद है। इतनी सारी सूचनाएं, इतने सारे विचार और इतनी सारी खबरें होती हैं कि समझना मुश्किल होता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। आज जवाब ढूंढना बहुत ही आसान हो गया है, एक बटन दबाइए और जानकारी आपके सामने है। लेकिन इस सुविधा ने सोचने की हमारी अपनी क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। अब मस्तिष्क के सोचने वाले बटन की जगह इंटरनेट के बटन ने ले ली है। ऐसे लोग जिन्होंने पुराना समय भी देखा है और आज का डिजिटल युग भी, उनके लिए ये बदलाव किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। साथियों, कभी कभी हमारा मन अपने आसपास की इतनी सारी चीजों में उलझ जाता है कि जो काम हमें करना चाहिए, जो बातें हमें सहेज कर रखनी चाहिए, वे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। मन थका होता है लेकिन रुकता कभी नहीं, वह लगातार उन बातों के बारे में सोचता है जो बदल रही है, फीकी हो रही है, लेकिन कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हमारे शरीर का सबसे बड़ा डेटा बैंक हमारा मस्तिष्क है, आपका ब्रेन, आपका सीपीयू है। जन्म से लेकर आज तक जो कुछ हमने देखा, सुना, सीखा और महसूस किया, वह सब उसमें जमा है, यानी आपका डेटा बैंक सुरक्षित है। कई बार हमें लगता है कि अब इसमें कुछ और समा नहीं सकता, लगता है इसकी क्षमता की एक सीमा है, लेकिन ये एक भ्रम है साथियों। सच्चाई ये है कि इंसान के भीतर सीखने, समझने और आगे बढ़ने की क्षमता लगातार बढ़ती रहती है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप किसी भी पड़ाव पे हो, हम कभी भी पूरी तरह भरते नहीं हैं। हमारे भीतर हमेशा कुछ नया सीखने और अपनाने की जगह बनी रहती है, क्योंकि हर रोज देखिए एक नए दिन की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद एक और दिन आता है और इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। रोज ही जीवन अपनी तमाम जटिलताओं के साथ हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हर दिन हमारे सामने नए विचार आते हैं, नई योजनाएं बनती हैं और मन करता है कि हर काम पूरी तरह, पूरी लगन से अच्छी तरह किया जाए, लेकिन एक साथ सब करना संभव नहीं होता है। पर सोचना, सीखना और समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी क्षमता हर दिन, हर क्षण बढ़ती जा रही है। तो सोचिए, खुश रहिए और सीखना कभी मत छोड़िए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि।

अभी आपने सुना अवैधा परवीन को। इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 होने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर।

0: रस्ते में।
1: सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम में। साथियों आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भारत में यूनेस्को विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और जानकारी के तहत आपसे विचार साझा करेंगे क्या है पश्चिमी घाट व पर्यटन के अनुसार इनका महत्व। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भेंट वार्ता से। आज बातचीत का विषय है दांतों के विभिन्न रोग व उपचार, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधविका खुराना। सबसे पहले श्रोताओं आपका परिचय करा दूं अपने विशेषज्ञ से। ये हैं डेंटल सर्जन पॉली क्लिनिक सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र में डॉक्टर माधविका खुराना। आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: और जैसा कि माधविका जी हमने अभी बात की, आज बातचीत के लिए हमारी चर्चा का विषय है दांतों के प्रमुख रोग और उपचार। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दांतों के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैम ने मुझसे पूछा है कि प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, मेन रोग दांतों के मेन तो यही है जो कैविटी लग जाती है, दांतों में सड़न होना, कीड़ा लगना। और दूसरा रोग संबंधित होता है मसूड़ों से लेकर, जिसमें मसूड़ों में भी अगर सड़न है, बदबू है या मुंह से आपको बदबू आ रही है, तो ये दो प्रमुख रोग हैं। और मसूड़ों के रोग को हम कहते हैं पायरिया एक आम भाषा में। तो मैम प्रमुख रोग तो ये हैं, इससे आपको और कुछ जानना है तो बताइए।
0: प्रमुख रोग आपने डॉक्टर साहब बता ही दिया कि ये पायरिया और जो सडन कैविटी जिसे हम कहते हैं ये है। तो अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि सडन जिसे हम कैविटी भी कहते हैं होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है, ये कैविटी क्रिएट कैसे होता है।
1: जी मैम बिल्कुल, सडन का प्रमुख कारण जो है हमारा भोजन। हमारा भोजन कैसा है पहला कारण, और दूसरा हम अपने दांतों की देखभाल कितनी करते हैं ये दूसरा कारण है। प्रथम मैं भोजन पे आना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप भोजन में चिपचिपा भोजन खाते हैं, बहुत मीठा भोजन खाते हैं, आपने खा लिया ये बात ठीक है, हम भोजन खा रहे हैं हमने लिया ठीक है, अब अगर आप दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो फिर ये कीड़े में परिवर्तित होगा, क्योंकि जिसको हम कैविटी कहते हैं, दांत में जो छेद हो जाता है जिसे हम कीड़ा कहते हैं, कैविटी कहते हैं। खाना आप खा रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे मुंह में जो नेचुरल कीटाणु हैं, अगर ये चिपचिपा खाना, गंदा खाना, बैड फूड, जंक फूड अगर आप खाते हैं, और अगर ये दांतों पे चिपकता है, उसके बाद हम दांतों की केयर भी नहीं कर रहे, देखभाल भी नहीं कर रहे, तो फिर ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं चिपका हुआ कीड़ा, मुंह में कीटाणु है, वो इसको खाते खाते आपके दांत को भी खाना शुरू कर देते हैं, जो ये कैविटी में परिवर्तित हो जाता है।
0: तो आपने जैसा बताया कि कैविटी होने का मुख्य कारण है हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली। हम यदि कोई चिपचिपा, जैसे बच्चे मोस्टली चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो वो चिपचिपा हमारे दांत में लगा रह जाता है पदार्थ, और फिर कीटाणु उसको हमारी दांतों को आघात करने लगते हैं। अब मसूड़े का एक रोग सुनते हैं डॉक्टर माधविका जी कि जिंजिवाइटिस है ना, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मसूड़ों के दो रोग हैं मैम, एक जिंजिवाइटिस है एक पेरियोडोंटाइटिस है। जिंजिवाइटिस जो शब्द है वो गम्स से आया है, गम्स मतलब मसूड़े। इसमें हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। ये तो है एक प्राथमिक स्टेज जिसको हम कह देते हैं जिंजिवाइटिस। अब दूसरी स्टेज है पेरियोडोंटाइटिस, जिसको लोग पायरिया भी जानते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी जो दांतों के नीचे जो बोन है, हड्डी है, उसमें भी प्रभाव आता है, हड्डी में सड़न होने लग जाती है, दांत पकड़ छोड़, जो हड्डी जो है वो पकड़ छोड़ने लग जाती है दांतों की। और इसको देखने में कैसे पता लगता है कि मसूड़े भी अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, मसूड़े थोड़ा नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, जिसे हम पायरिया भी कहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं।
0: तो जिंजिवाइटिस जो है वो मसूड़ों में जब सूजन आ जाए तो समझना चाहिए, और पायरिया का रिलेशन हड्डी से, दांतों के नीचे जो हड्डी है उससे है। तो बहुत सावधान रहने की यहाँ जरूरत है, उपचार की बात भी आपसे करेंगे। और अभी फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि दांतों में जो अक्सर हम कहते हैं संवेदनशीलता होगी, सेंसिटिविटी, कुछ ठंडा या गर्म का जो अनुभव होता है, हाँ जी, वो क्यों होता है, इसके क्या कारण है।
1: मैम इसका एक कारण तो कैविटी भी है, उसमें एक सिंगल टूथ में, उस खास टूथ में जिसमें कैविटी बन रही है, क्योंकि कैविटी बन गई है तो वहाँ सेंसिटिविटी भी होने की संभावना पूरी है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण हम आते हैं, एक शब्द है एट्रीजन, एक है एब्रेजन। एट्रीजन तो होता है जो हमारे दांतों का सतह जिससे हम चबाते हैं वो घिसना शुरू हो जाता है, उम्र के साथ भी घिसता है, और अगर हम ज़्यादा एसिडिक फूड जिसमें कि हमारा एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह के ठंडे पेय पदार्थ जो आते हैं, अगर इनका हम ज़्यादा सेवन करते हैं उससे जो सरफेस हमारा होता है, सतह है, जिससे हम खाते हैं, वो घिसती है और इससे सेंसिटिविटी हो जाती है। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया एब्रेजन। एब्रेजन मैडम हमारे गलत टूथ ब्रशिंग के मेथड से होती है जिसमें दांत गम्स के लेवल से वहां से घिसना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सभी कारणों में सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होती है मैम।
0: तो श्रोताओं, आपके लिए तो बहुत अच्छा मैसेज है कि सतर्क होने की, यदि शुरुआत में ही आपको ऐसा लग रहा है ठंडा या गर्म का अनुभव होता है तो जरूर कहीं ना कहीं दांत में कैविटी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जल्दी से अपने एक्सपर्ट के पास जाइए और सही सलाह के साथ दांतों की सुरक्षा कीजिए। अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि दांतों में दर्द होने के सामान्य कारण क्या है। संवेदनशीलता की बात तो हमने कर ली कि अब लग रहा है कैविटी है तो दिक्कत आ सकती है, अब दर्द जब बहुत पीक पर चला हो जाए तभी लोग जाते हैं डॉक्टर के पास।
1: आप बिल्कुल तो, मैं सहमत हूँ। हाँ जी,
0: तो इसके सामान्य कारण क्या है दांतों में दर्द होने के?
1: जी मैम, सबसे पहला कारण तो यही है, मेरी यही आप श्रोताओं से एक प्रार्थना है, इंतजार मत करें। ये सबसे हाई स्टेज जो है, और दांत का दर्द जो है वो सबसे बुरा दर्द होता है शरीर का। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगी श्रोताओं कि ज़रूर पहले ही अपना नियमित चेकअप आप कराते रहें, क्योंकि सबसे पहला कारण तो कैविटी ही है। कैविटी मींस अगर आपको दांत में कीड़ा है। देखिए, दांत की तीन लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटीन एंड पल्प। पल्प में हमारे नसें पड़ी हैं, जब तक नसों तक कीड़ा नहीं पहुँचेगा तब तक दर्द नहीं होता है। हल्का फुल्का दर्द होता है जब डेंटीन तक सेंसिटिव पहुंच जाता है ये कीड़ा, क्योंकि उसके नीचे ही हमारी नसें पड़ी हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उस लेवल तक हमें इंतज़ार करनी ही नहीं है। ये सबसे प्रमुख कारण यही है मैम दांतों में दर्द होने का। और बाकी ये होता है, कई बार आप खाना खा रहे थे, दाल है कुछ खाया, उसमें कोई कंकड़ पत्थर आ गया, वो एकदम आपको लग गया, उससे भी आपको उस टाइम में थोड़े समय तक पेन या संवेदनशीलता दोनों ही हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको सतर्क रहना है। और अगर दांत जैसे हमारे, क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े होते हैं, जो हमारा नेचुरल मुंह में दांतों का शेप है
0: जी।
1: अगर उसमें कुछ खाना फंस गया मैम, जो पेशेंट कोशिश किए जा रहा है उससे निकल ही नहीं रहा, कई लोग सेफ्टी पेन ले रहे हैं, हाँ जी टूथपिक ले रहे हैं, उससे वो चोट मार रहे हैं अपने मसूड़ों को बिना देखे, ऐसे ही बस बैठे हैं और कुरेदे जा रहे हैं, तो उसमें भी दर्द स्वाभाविक है मैम। ये कारण हो सकते हैं प्रमुख।
0: तो ये जो दर्द है, ये तीनों लेयर से, जो दांत की तीनों लेयर्स आपने बताया, एनामेल, डेंटाइन एंड पल्प, इनसे रिलेटेड है। किसी भी लेयर में हो सकता है या फिर कोई खाना,
1: पल्प में,
0: पल्प
1: वहां पे हमारी नसें पड़ी होती हैं,
0: तो वो डिस्टर्ब हो गई, तो दैट मींस आपको दर्द तो होना ही।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
0: अब बात करते हैं बच्चों की, बच्चों में दांतों की समस्याएं अधिक क्यों देखने को मिलती है?
1: जी, ये बड़ा ज्वलंत विषय है, और हमारे पॉलीक्लिनिक में भी जब हमारे यहाँ टीकाकरण दिवस होता है वीरवार के दिन
0: जी,
1: हर वीरवार सिवाय की लास्ट जो मंथ का आखिरी वीरवार है उस दिन थर्सडे को नहीं होता। अब जब बच्चे वहाँ आते हैं, मैं उनका रूटीन चेकअप करती हूँ मैम, और सच में बच्चों में ना कीड़े लग रहे हैं। ये मत सोचिए छोटे बच्चे हैं कुछ नहीं होता, दांत हैं, अगर खाना शुरू कर दिया तो, अगर देखभाल नहीं करेंगे तो सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों में दांतों में कीड़े की होती है मैम, जो सबसे मेजर है। मसूड़ों में अभी नहीं, छोटे बच्चे हैं वो मसूड़ों तक नहीं कोई ज़्यादा उन्हें परेशानी होती, लेकिन ये जो कीड़ा लगने का भी प्रमुख कारण होता है बेसिकली यही है कि उनका ब्रश ही नहीं शुरू किया जाता, ये सोचकर कि बच्चे हैं। और आज आप देख सकते हैं, चाहे वो 1.5 साल का भी बच्चा होगा, जो मैंने देखा, मेरे वहाँ एक्सपीरियंस है, उसको भी चॉकलेट्स तो खिलाई जा रही, टॉफ़ीज तो दी जा रही हैं, बिस्किट्स खिलाए जा रहे हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या नहीं बैड फूड देते माता पिता, सब दे रहे हैं बच्चों को, खान पान ऐसा हो गया, ब्रश किया नहीं जा रहा। तो मैम इसका नतीजा तो दांतों में कैविटी लगना ही होगा, बच्चों में अधिकतर ये देखने को आता है।
0: तो ये प्रॉपर ब्रशिंग भी एक कारण है, और एक तो हैबिट घर में तो मिल ही रहा है प्यार से, और हम भी किसी के पास जाते हैं तो गिफ्ट में अब चॉकलेट है, दिस एंड दैट, बहुत सारी चॉकलेट हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं।
1: जी मैम, इजी टू कैरी है ना, आसानी से, और हमें लगता है ये अच्छी लगेंगी बच्चों को।
0: खास जरूर लें, पर उनकी केयरिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर ब्रशिंग के बिना तो दांतों की समस्या होना लाजमी है।
1: जी मैम,
0: अब बात करते हैं प्लाक और टार्टर की। दांतों पे कुछ लेयर्स जम जाते हैं और लोग डॉक्टर के पास जाते भी हैं कि इस लेयर को कैसे रिमूव किया जाए, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी मैम, जो प्लाक वर्ड मैम ने जो बोला है, प्लाक जो होता है फिर ये फर्स्ट स्टेज है
0: जी।
1: इसमें दांतों में चिपक रहा है फूड पार्टिकल्स ही होते हैं, जो आपने खाना खाया, आपने कुल्ला अगर नहीं किया वो चिपक रहा है, वो आसानी से आप ब्रशिंग से भी हटा सकते हैं, यहाँ तक आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। अब यही प्लाक अगर रूटीन में आपको आदत नहीं है खाना खाने के बाद कुल्ला करने की, या ब्रशिंग की आपकी हैबिट नहीं है, तो ये जो नरम नरम पदार्थ जो दांतों में जमता है, इसमें मुंह में से ही कैल्शियम डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसको फिर हम टार्टर कहते हैं या कैलकुलस आम भाषा में। और इसके लिए तो आप जब तक अपने दंत चिकित्सक के पास नहीं आएंगे तब तक इलाज नहीं संभव।
0: तो इस टार्टर को आप बनने ही मत दीजिए।
1: जी मैम,
0: यही मैंने संदेश है।
1: हाँ जी,
0: कि आप एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी कुछ भी खाए तो कुल्ला करने से परहेज ना करें।
1: जी मैम, ये मेरी हर बार सलाह होती है अपने मरीजों को, बच्चे हैं चाहे वो स्कूल में गए हुए हैं, वहां पे उन्हें

0: आप रिसेस है उसमें आप उन्हें उनका खाना दे रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि उन्हें हैबिट डाल दें सब परिवार का सदस्य खाना खाने के बाद कुल्ला, और वो भी उंगली से आप अगर दांतों को साफ कर लेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा, इससे दांतों पे चिपका हुआ नहीं रहता है।
1: तो वो लेयर जमेगा ही नहीं और दांत आपके सुरक्षित, टार्टर की समस्या आएगी ही
0: जी,
1: नहीं
0: जी।
1: और अब बात मुंह के दुर्गंध की, बैड ब्रीथ जिसे हम कहते हैं, ये किन कारणों से होता है? कई लोग बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी लगता है कि थोड़ी सी डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन दुर्गंध के कारण क्या है ये बताएं।
0: जी, मेन कारण तो मैम, सबसे पहला कारण तो हमारा मुंह ही, अगर हमारे मसूड़ों में, मैंने जैसे बताया था मसूड़ों में अगर सड़न हो गई है तो उससे क्या होता है, मसूड़े फूल गए, मुंह में से खून आता रहता है, और ये बट नेचुरल है, एक बदबू मुंह से आना स्वाभाविक है, सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण जो हमारा, मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा है वो कहता है, अगर हम ज़्यादा देर मुंह में कुछ ना डालें तो, जैसे कई लोगों की आदत है सुबह नाश्ता किया उसके बाद दोपहर तक कुछ भी नहीं लेते, पानी भी नहीं ले रहे हैं वो लोग, तो ये मैं अपने मरीजों को जब मेरे पास आते हैं देखने में उनके दांत मुझे ठीक लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मसूड़ों की दिक्कत है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि क्या आपका खान पान की शैली क्या है तो उसमें ये पता लगता है, हम तो सुबह नाश्ता करके गए उसके बाद तो मैडम हम काम पे निकल गए हैं और हमें तो पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। तो जितनी देर अगर आप मुँह को ऐसे रखेंगे जो थूक है वो सूखेगा सलाइवा, तो मुंह से बदबू आना स्वाभाविक है। इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूंगी मैडम, जैसे पेट संबंधी बीमारियां भी होती हैं, कब्ज जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी अगर होती है उसमें भी मुंह से बदबू आना स्वाभाविक है। ऐसे ही गले का, अगर गले में कोई दिक्कत रहती है, खराश रहती है, पेन रहता है, इन्फेक्शन रहता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि मुंह से ही उसकी स्मेल भी आएगी। ये कुछ कारण है मैडम जो मैंने बताए श्रोताओं।
1: तो आपने एक एक करके सभी जो कॉमन इसके कारण है वो हमें बताया, और सभी श्रोताओं भी हमारे इस को सुन के सतर्क हो जाएंगे कि हमें प्रॉपर फूड हैबिट रखनी होगी। आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है जिससे आपका सलाइवा सूखे और मुंह से स्मेल आए। और दूसरा कारण आपने एक कब्ज और गले में खराश या कोई भी दिक्कत है तो इससे दुर्गंध हो सकता है, मुंह में दुर्गंध, मुंह की दुर्गंध हो सकती है। दांतों की सड़न को प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचाना जा सकता है? जैसे हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में यदि वो पकड़ में आ गई तो हम इससे बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं, तो इसको पहचानेंगे कैसे?
0: मैम, इनिशियल स्टेज जो हम अपने लेवल पे हमारे आम लोग पहचानेंगे, दांतों को आप अपने शीशे में, जब आप सुबह चाहे ब्रश भी कर रहे हैं
1: जी,
0: मिरर आपके सामने होता है, शीशा लगा होता है बाथरूम में लगभग, तो आप एक बार अपना मुंह खोलकर देख लें, अगर आपको कहीं पर भी काला निशान कुछ लग रहा है, आपको अगर लग रहा है अब आपको ये कीड़ा है, नहीं है, सड़न है, नहीं है, इसके लिए तो आपको फिर दंत चिकित्सक के पास आना ही पड़ेगा। लेकिन आप खुद अगर आपको जरा सा भी लग रहा है ये निशान है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा खाना फंस रहा है दांतों में कहीं पर भी, तो आपको, जब तक आप दंत चिकित्सक के पास नहीं आते हैं इसकी आपको हम तसल्ली नहीं दे सकते कि ये सच में सड़न है। कई बार जरूरी नहीं सड़न हो, लेकिन जब तक दंत चिकित्सक नहीं बोलेगा तब तक तो ये मान के चलिए कि कोई दिक्कत है और इसके लिए आपको जाना ही है दंत चिकित्सक के पास।
1: तो दांतों की सड़न को, की जो प्रारंभिक अवस्था है उसे जानने के लिए आपको डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए, अपने आप कोई इलाज मत शुरू कीजिए, और या फिर उसे बढ़ने भी मत दीजिए, आप इसे पहचान करके अपने एक्सपर्ट के पास जाइए और निजात पाइए। दांतों के रोगों का संपूर्ण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: मैम, एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है।
1: जी, बिल्कुल सही
0: कहावत है मैम, और स्वस्थ शरीर के लिए हमें स्वस्थ दांत चाहिए ही चाहिए। आप देखिए, जिन दांतों से आपको खाना है और वो भी चबा के खाना है, आपने ये भी सुना होगा कि स्टमक हैज नो टीथ, हमारे पेट में कोई दांत नहीं है, क्योंकि अगर क्या होता है, दांतों में कोई दिक्कत है, आप खाना अगर निगल रहे हैं जो भी लोग, तो क्या होगा, पूरा खाना अंदर जा रहा है और पेट की तकलीफें होंगी, पेट में तकलीफें हुई तो आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट आएगा। तो स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दांत का होना, स्वस्थ मसूड़ों का होना परम आवश्यक है।
1: तो दांतों का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य से सीधा संबंध है।
0: जी,
1: रूट कैनाल उपचार क्या है और कब आवश्यक होता है? अक्सर हम सुनते हैं इसके बारे में, आज हमें विस्तार से बताइए।
0: जी मैम, रूट कैनाल, जैसा मैंने आपको स्टेजेस बताई थी, दांत के तीन लेयर्स हैं, मैंने बताया है सबसे ऊपरी परत इनेमल, फिर डेंटीन, फिर पल्प। जब पल्प में हमारा कीड़ा पहुंच जाता है, वहां पे नसें पड़ी हैं, और इस अगर हमारे पास पेशेंट आया बहुत पेन है, पहले तो पेशेंट ने खुद हमें बताया कि बहुत ज़्यादा पेन है, ठंडा गर्म लग रहा है, ये तो हमारे मरीज की तरफ से हमें पता लगा। फिर हम इसके लिए एक्सरे करते हैं मैम, डेंटल एक्सरे होते हैं, दांतों के एक्सरे होते हैं, उसके बेसिस पर अगर हमें लग रहा है कि ये कीड़ा सच में ही हमारी पल्प में भी जा रहा है, नीचे की तरफ जो जड़ें हैं उधर भी, बोन में भी इन्वॉल्वमेंट इसकी हो रही है, तब हम सलाह देते हैं RCT, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। और ये बहुत ज़रूरी है, आप ये मत सोचना कि जिसके वैसे तो 32 दांत ज़रूरी नहीं 100% हमारे देश में लोगों के मिले, बट मिलते हैं, 32 भी मिलते हैं, 28 भी हैं, 30 भी हैं, और हर दांत की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि आपके शरीर की है। तो इसलिए ये मत सोचना एक दांत में कीड़ा है कोई बात नहीं, दर्द हो गया था, इसका नुकसान क्या होता है, वो धीरे धीरे कीड़ा दांत को खाते खाते तोड़ देता है। और सरकारी अस्पताल में तो लोग आते ही स्टेज में मैम, जब दांत आधे से ज्यादा टूट गया, सूजन आ गई है,
1: हो गया, तब
0: तो उनको ये होता है कोई नहीं एक निकल जाएगा कि बाकी दांत से मैं इधर से खा लूंगा, अगर सीधी तरफ का दांत खराब है तो कोई नहीं, मैं उल्टी तरफ से तो खाना तो खा रहा हूं ना। ये प्लीज इस चीज से आप ऊपर उठें, हर दांत की इंपॉर्टेंस है, तो उस तरह से आप दांतों के डॉक्टर के पास एक बार आ जाएं। बस इतनी सी मैं आपको राय दे रही हूं।
1: रूट कैनाल के बारे में आपने बड़े विस्तार से बताया कि ये कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन आपको आपका भी आप फर्ज बनता है कि आप इन बहुत ध्यान रखें, एक खराब है तो दूसरे जार से हम खा रहे हैं, चल रहा है, चलने मत दीजिए, डॉक्टर को अप्रोच कीजिए। दांत निकालने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ती है?
0: ये मैम मैंने आपको भी सारा अभी बताया
1: कि रूट कैनाल को फिल करके भी काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल खराब हो गया, तो उस टाइम एक्सट्रैक्शन
0: बिल्कुल मैम, जब दांत इतना टूट गया है, और कई बार तो लोग आते हैं जिसमें सिर्फ जड़ें ही पड़ी है, तो उसमें तो कुछ इलाज हमारे लिए संभव है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं खुद भी दांतों की डॉक्टर हूं, और हम जो डेंटिस्ट हैं, ये जो दांत निकालना है ना, ये सबसे लास्ट ट्रीटमेंट होती है। पूरी कोशिश ये होती है कि अगर दांत आपका अपना नेचुरल बच सकता है तो उसे बचाने में ही समझदारी है, क्योंकि जो प्रकृति ने दिया है उस वही आपके लिए अच्छा है। ये मत सोचना कि ये निकलवा लेंगे, नकली लगवा लेंगे, फिर नकली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको झेलनी ही पड़ेंगी, इसलिए अपने दांतों को पूरी इम्पोर्टेंस दीजिए।
1: दांतों की सफाई के बारे में अब आपसे जानना चाहेंगे, स्केलिंग क्या है और ये क्यों आवश्यक है?
0: जी, जैसे मैम मैंने आपको बताया था, पहले हमारा एक प्रश्न था जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस, ये वही है जब गम्स की, मसूड़ों की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, पेशेंट हमारे पास अगर आ रहे हैं कि हमें खून आ रहा है या हमें स्मेल आ रही है, और हम देख रहे हैं कि अगर मसूड़ों में गंध जमा हुआ है, जिससे हमने अभी इसके दौरान बात की प्लाक और टार्टर के फॉर्म में, तो ऐसे में हमें स्केलिंग करनी आवश्यक है, और वो करानी चाहिए, क्योंकि जो स्केलिंग है उससे आपके दांतों का स्वास्थ्य बेहतर ही होता है। अगर आपका डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक आपको कहता है कि स्केलिंग ज़रूरी है, तो वो ज़रूर करानी चाहिए। ये है बेसिकली मसूड़ों में जो गंध फंस गया है उसकी सफाई करना, इसको हम स्केलिंग कहते हैं।
1: तो साथियों, डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब डॉक्टर माधविका आपसे जाना चाहेंगे, कृत्रिम दांत जो कई लोग डेंचर्स भी लगाते हैं और इम्प्लांट, डेंचर्स और इम्प्लांट में क्या अंतर है?
0: जी, डेंचर्स बेसिकली मैम रिमूवेबल चीज़, जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपने चाहे नीचे का डेंचर होता है जबड़े में दांतों को लगवाना आर्टिफिशियल तरीके से एक प्लेट के माध्यम से, और वो हमें फिर उतार के रखना पड़ता है रात को, सुबह उसे साफ करके फिर लगाना होता है, ये तो है डेंचर, ठीक है। और जो इम्प्लांट है वो अब लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, उसमें हम एक स्क्रू आप ही के जबड़ों में फिक्स करते हैं और उसकी मदद से हम ये जबड़ा लगाते हैं। सो दैट इज़ जो फिक्स्ड है, जो आपके मुंह में लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं छेड़ना उसको, वो हम उसे इम्प्लांट कहते हैं।
1: तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, दोनों में से क्या बेस्ट है? इम्प्लांट में कोई एजिंग के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डेंचर्स वी कैन रिमूव,
0: यस,
1: और उसको आप लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इम्प्लांट के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा व्हेनेवर यू नीड टू रिमूव
0: एनी प्रॉब्लम। यस यस मैम, डेंचर और इसमें एक तो सबसे पहला फर्क तो आता है मनी का, पैसों का, राइट
1: ये तो मेन है जिनकी कैपेसिटी है, हाँ, वो

0: अकॉर्डिंगली करवाते
1: हैं, फाइनेंशियल आपका कैसा स्टेटस है। तो लेकिन ये दोनों में से एक लगवा जरूर लेना चाहिए, जो मेरी राय है। सबसे पहली जो बात है कि लगवा लेना चाहिए अगर आपकी ज़रूरत है तो। और दूसरा मैम, जो इम्प्लांट है उसमें वैसे तो सरकारी अस्पतालों में तो ये काम नहीं होता, लेकिन क्योंकि प्राइवेट में या कॉलेजेस में सब जगह हो रहा है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आना मिनिमम चांस होता है। क्योंकि इस इम्प्लांट लगाने से पहले भी डॉक्टर्स अपनी कई इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, और जब वो देखते हैं कि पेशेंट का मुंह, मरीज का मुंह जो है, उसकी जो बोन है, वो सब इसके लिए तैयार हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आना, अब कॉम्प्लिकेशंस तो जो भी ट्रीटमेंट है उसमें आएगी आएगी, लेकिन इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस इतनी मेजर नहीं आती कि हम सोचें कि हम इसको अवॉइड करें। ये ज़रूर है फाइनेंशियली, मनी वाइज, पैसे के हिसाब से इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है।
2: तो दो बातें हमारे श्रोताओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इकोनॉमिक स्टेटस
1: जी,
2: और एक आपके बोन्स कैपेबल हैं तो आप इम्प्लांट करा सकते हैं।
1: हाँ,
2: वो डेंटिस्ट जो आपके एक्सपर्ट हैं उनकी राय से आप कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या सावधानियाँ। अब उपचार की बात, खराबी तो आ गई, डॉक्टर हैं हमारी सलाह देने के लिए, लेकिन पहले ही यदि हम सतर्क हो जाएं तो सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी चाहिए।
1: जी मैम, सेइंग है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बचाव में ही सुरक्षा है। ये बिल्कुल बिल्कुल शत प्रतिशत यही है। सिर्फ बहुत सिंपल तरीका है टूथब्रश, जो आप सबको पता है, लेकिन मेरे श्रोताओं मैं ये कहना चाहूंगी, अगर मैं पूछती हूँ ब्रश करते हैं जी, कब करते हैं, सुबह तो सबको पता है, लेकिन डेंटिस्ट ही आपको बताता है कि रात को जब आप सोने जाने लग रहे हैं तब ब्रश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ब्रश करने के बाद रात को आप मिल्क या कोई मीठी चीज़ नहीं ले सकते, आप सिर्फ प्लेन पानी ले सकते हैं। सोने से पहले ब्रश का इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर आप सो गए, अब आप सुबह उठेंगे, चाहे 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, 7 घंटे, अगर सोने से पहले आपके दांतों में कुछ चिपका रह गया तो वो वही बात हो जाएगी, दांतों में सड़न होएगी, कैविटी होएगी, और ये ना आपको एकदम से नहीं पता लगता, आपको सिर्फ दिख रहा है कालापन है, आपके पास समय का अभाव है, या आपका ध्यान नहीं है, आप पहुंचते नहीं है, तो ये नहीं होता आपको लगे मैं तो ब्रश कर ही नहीं रहा था या कर नहीं रही थी, आज तक तो मैंने किया नहीं, मैं 30 साल की हो गई, मैं 35 की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम करेंगे खान पान की, जो मैं बारी बारी बता रही हूँ, उचित खान पान जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें, हरी सब्जियाँ, फल, हर तरह की दालें, रोटी, चावल, जूस, जो भी आप अच्छा खाना जिसे हम कहते हैं गुड फूड, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे हर ऑर्गन के लिए जो ज़रूरी है, वही हमारे दांतों के लिए उतना ही ज़रूरी है। और ये जो बैड खाना दांतों के लिए स्पेशली चिपचिपा, जो भी चिपकेगा, चाहे वो बिस्किट भी है, चाहे वो पेस्ट्री है, इसे हम रिफाइंड फूड कहते हैं। एक और मैं आपकी नॉलेज के लिए मैडम श्रोताओं को बताना चाहूंगी,
2: जरूर,
1: लोग मेरे से आके कहते हैं कि पहले हमारे बुजुर्ग जो थे पहले टाइम में, वो तो ब्रश नहीं करते थे, वो तो सिर्फ दातुन करते थे, उनके तो दांतों में ऐसी दिक्कत नहीं आई। मेरे पास ये लोगों का प्रश्न होता है, और इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जो पहले वाले लोग थे उनसे पूछिए, क्या उनके पास पेस्ट्री थी, क्या उनके पास बिस्किट थे खाने में, क्या उनके पास जूसेस थे, वो क्या करते थे, गाजर है छील के खाई, गन्ना है चूसा, कुछ भी चीज़ फाइब्रस, जिससे दांतों की सेल्फ क्लिनजिंग, दांतों की सफाई होती रहती थी, ठीक है, और वो कुल्ला तो करते ही रहते थे, उनका तो ये कितना, वो लोग तो हमसे ज़्यादा इस मामले में ध्यान रखते थे,
2: बहुत
1: हाथ धोना है, कुल्ला करना है, इसको वो शुद्धता मानते थे, उसके बाद भोजन करने बैठते थे। और आजकल समय के अभाव में भी मैं कहूँगी कुछ आदतें ऐसी बन चुकी हैं, कितनी बार आप देख सकते हैं घर आए हाथ धोने का भी नहीं किसी को याद रहता, क्योंकि वर्किंग लेडीज भी हैं, थकी हुई आई हैं, कुछ खाना भी बना रही हैं, तो बड़ी सारी बातें हैं। इसलिए सिर्फ ब्रश करना सुबह और रात का, और अपना खान पान, इन दो का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा सबसे ज़रूरी, अपने डेंटिस्ट के पास आ जाइए ना 6 महीने में एक बार, डेंटिस्ट से मिल जाइए, अपने दांतों का चेकअप करा लीजिए, सबसे सिंपल काम है।
2: तो प्रॉपर चेकअप बहुत जरूरी है।
1: जी मैम,
2: चाहे थोड़ा समय अंतराल आप दीजिए, 3 महीने 6 महीने, लेकिन एक रूटीन चेकअप की हैबिट बनाएं और जिसे समय रहते इलाज संभव हो।
1: जी मैम,
2: और अब आपसे जानना चाहेंगे ब्रश करने की सही विधि क्या है।

0: कष्टों से भी करते हैं
1: जी, जी.
0: और प्रॉब्लम भी मोस्टली आती ही है
1: जी.
0: तो क्या ब्रश करने का तरीका भी इसके लिए
1: जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल. ब्रश हमें जो है ना, ऊपर के अगर दांत हैं, ऊपर के दांत हैं, मसूड़े ऊपर हैं दांतों में, ऊपर के दांतों में ब्रश ऊपर से नीचे चलेगा, फ्रंट में, साइडों में, और मुंह खोलकर अंदर भी ऊपर से नीचे ब्रश चलाना, ठीक है? और जो नीचे के दांत हैं उधर नीचे से ऊपर ब्रश चलेगा, बाहर अंदर, और एक जहां से आप खाना चबाते हैं वहां भी अपना ब्रश रखकर आप हल्का हल्का आगे पीछे हिलाएंगे, नीचे भी, ऊपर है तो ऊपर ब्रश के जो ब्रिसल्स, हेयर, बाल जिसको हम कहते हैं, वो चिपके, और फिर सफाई होगी. और श्रोताओं, मैं बताना चाहूंगी, सबसे ज्यादा प्लाक और टार्टर की प्रॉब्लम, जो ये हमारे जीभ का जीभ है और जो नीचे के दांत हैं, जो नीचे के दांतों का हिस्सा जीभ की तरफ है, वहाँ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि उस जगह में ब्रश होता ही नहीं है. तो वहाँ की सफाई ज़रूर रखिएगा, और आप देखेंगे कि सच में आपको शायद ही ज़रूरत पड़े ट्रीटमेंट की.
0: तो ब्रश करने का सही तरीका आपके दांतों को सुरक्षित रख सकता है.
1: जी मैम.
0: डॉक्टर माधविका, क्या तंबाकू और धूम्रपान दांतों के रोगों का कारण बन
1: सकते हैं? जी मैडम, बिल्कुल है, बिल्कुल है. तंबाकू और धूम्रपान से जो मसूड़े तो आपके गलेंगे ही गलेंगे, आपका शरीर की इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं रोग निरोधक क्षमता, वो कम होएगी, तो वो भी प्रॉब्लम देगी. और जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाह रही हूँ, ओरल कैंसर, मतलब मुँह का कैंसर, जो आप जानते ही हैं, जानलेवा भी होता है कि आपको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि हर किसी को समझ नहीं है, तो कृपया इनसे तो बिल्कुल दूर रहें. ये मेरी श्रोताओं से प्रार्थना है कि ये जो गलत चीज़ें हैं, धूम्रपान, तंबाकू, मसाला, अच्छा वैसे भी जो मसाला है ना, वो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखने की आदत होती है, गाल के अंदर दबा लेंगे, वहाँ पे भी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, आपको पता भी है. हमारी जो देश है, या हमारे जो टीवी, जो हमारा माध्यम है, मीडिया के थ्रू भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि इनसे ये बहुत हानिकारक हैं, इनसे दूर रहा जाए, मेरी भी यही सलाह है.
0: तो आप तंबाकू और धूम्रपान से बहुत बहुत दूरी बनाएं और अपने दांतों को सुरक्षित रखें. मधुमेह का दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: मधुमेह,
0: डॉक्टर माधविका, आजकल डायबिटीज जो है वो कॉमन होती जा रही है.
1: बिल्कुल.
0: और ये एक साइलेंट किलर की तरह हर घर में लगभग प्रवेश कर चुकी है या कर रही है. तो इसके बारे में बताएं कि दांतों और मसूड़ों से इसका क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ता है?
1: डायबिटीज, जब जो हम कहते हैं, जब हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है. जब शरीर में इम्यूनिटी कम हुई, तो जो पेरियोडोंटाइटिस जो मैंने आपको बताया, उसमें ये जो हमारी हड्डी है, दांतों के नीचे की हड्डी, वो कमज़ोर पड़ेगी, मसूड़े खराब होंगे. तो आप जान ही लें कि जब दांतों पर असर आएगा, दांत हिलने लग जाते हैं, दांत अपने आप भी गिर जाते हैं. सेकेंडली, इससे ना मुंह बड़ा ड्राई रहता है, इसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, क्योंकि इसमें जैसे मुंह सूखेगा, पानी की प्यास बारी बारी लगती है. जब सूखा मुंह है, तो सूखा मुंह हमारे कीटाणुओं के लिए एक घर बन जाता है, जिससे आपको मुंह में रिलेटेड, गम्स रिलेटेड कोई निशान पड़ गया, और वो निशान बाद में किसी और चीज़ में बदल सकता है जो अच्छा नहीं है हमारे लिए, वो प्रॉब्लम हो जाती है मेन, जो शुगर से हमारी रिलेटेड है, इसको हम ड्राई माउथ कहते हैं मैम.
0: तो डायबिटीज से दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और इसे निजात पाने के लिए आपके डॉक्टर से सही सलाह लेना
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल.
0: जरूरी है.
1: और तीसरा ये कहूंगी, अगर आप दांत निकलवाते हैं, अब हमारा क्या होता है, जब तक कि पेशेंट की शुगर नॉर्मल नहीं आती है, तब तक हम दांत नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि अगर हमने दांत निकाला और उसमें हीलिंग, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल ही बैड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो वो जो जख्म है वो नहीं भरता है, तो हमें अवॉइड करनी पड़ती है इसमें ये ट्रीटमेंट, माइनर सर्जरी, हल्का सा ऑपरेशन या दांत निकालना, ये सब डायबिटीज से रिलेटेड है.
0: और अब आखिरी सवाल आपसे, दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मेरा संदेश, मैं बारी बारी तीन बातें क्लियर कर चुकी हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने मित्र खुद हैं
0: जी.
1: मैंने आपको बता दिया है, दांतों में ब्रश करना है, दो टाइम करना है, सुबह करना है, रात को करना है. दूसरा, खान पान, जो आपके पूरी हेल्थ के लिए भी है, दांतों के लिए तो मेन है ही है, स्वस्थ दांत स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, दूसरा मैंने आपको मेन बताया है। तीसरा मैंने आपको यही बताया है, आपको नियमित दांतों के चिकित्सक के पास 6 महीने में अपना चेकअप करा लेना चाहिए। मान लो आप हॉस्पिटल वैसे भी किसी वजह से आए हैं, एक बार दंत चिकित्सक को दिखा दें, और सरकार ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि हर सरकारी अस्पताल में दांतों के डॉक्टर हैं, आपको सिर्फ उन तक जाना पड़ेगा, इतना सा काम करना होगा और 6 महीने में एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं। ये मैं आप सब श्रोताओं को अपनी तरफ से एक संदेशा देना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, जब आप लोग नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो फिर हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा, सब और खुशहाली रहेगी और सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें और अपने संपर्क में आने वाले आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जहाँ भी आपको मौका मिले, जिन श्रोताओं ने भी मुझे सुना है, अगर आपको ये बातें समझ आई आपके भले के लिए तो इसे आप साझा ज़रूर करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
0: डॉक्टर माधविका खुराना जी, आपने बड़े विस्तार से दांतों के विभिन्न रोग और उपचार विषय पर हमसे बातचीत की, हमारे श्रोता इस बातचीत से अवश्य लाभान्वित होंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब डॉक्टर माधविका, चलते चलते आपकी पसंद का गीत हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे।
1: थैंक यू सो मच मैम, और सबका मंगलमय दिन रहे यही मेरी कामना है।

हेलो हेलो, लगता है श्रोता का संपर्क हमसे टूट गया है। ये सुनना चाहते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का गीत। इनकी फरमाइश पूरी करते हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी दीदी।
0: हेलो नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम से?
1: दीदी मैं तेज चंद्र बोल रहा हूँ। देखिए मैं जन्मभूमि जिला उन्नाव थाना गाँव के रहने वाला और फोन लगा हूँ कुरुक्षेत्र सात रस्कल।
0: क्या बात है, आप रहने वाले हैं बिजनौर के और यहाँ आप कामकाज करते हैं। कामकाज कैसा चल रहा है सतीश जी? बढ़िया चल रहा होगा यही आशा करते हैं।
1: हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा है दीदी।
0: और रेडियो साथ में सुनते रहते हैं है ना?
1: मेरे पास ये दीदी ना रेडियो भी सुनते रहते हैं।
0: क्या बात है, आज गाने कौन से सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: हम फिल्म जो गीत बजेंगे आप सुनने में।
0: अंश फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: समाचार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हेलो। बोल रहे हैं
1: दीदी जी, उत्तर प्रदेश जिला कांग्रेस से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: आपका स्वागत है और कार्यक्रम अपने समापन की ओर है, तो जल्दी से अपनी फरमाइश बता दीजिए, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: वैष्णव जी, मैं आज सुनूंगा मैं अंदाज मूवी का गाना, किसी से तुम प्यार करो।
0: आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, दिन कोई भी हो सुहाना सा ही लगता है जब तक हमारा मन अच्छा है। जब मन दुखी होता है तो फिर चाहे बाहर कितनी भी खुशियां हो लेकिन हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि मन सुखी नहीं है। तो मन को खुश रखना ज़रूरी है, उसके लिए मन की शांति ज़रूरी है। तो आइए इसी बात के साथ आज के इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं। मिश्र संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले आज सुनवाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी ये कविता, जिसे सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने और अपनी मीठी आवाज़ में इन्होंने इसे गाया है जगजीत सिंह ने ही, और एल्बम का नाम है नई दिशा।

और आइए अब जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये गजल। एल्बम का नाम प्यार का पहला खत। इस गजल को लिखा है हस्ती ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। एल्बम का नाम दिल झूम झूम नाचे। गीत और संगीत ललित सेन का।

देखा है तेरी आंखों को, इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ और शब्द रचना साधु की, और इस गीत को सुरों में ढाला ललित ने।

शान का गाया और लिखा गीत आपने सुना तन्हा दिल। इस एल्बम से राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और एल्बम का नाम दीवाना।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में सुनिए नक्शलायलपुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज का मिश्र संगीत का ये कार्यक्रम रंग तरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: रंग तरंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और GST के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतीक

0: फल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है। फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल है और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए, जैसा कि आपको बताया, मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
2: नहीं, नहीं।

0: सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए, और सपने में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां। इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: कौन है जो?

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई है।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस गीत ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

लक बाय चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारे रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी, आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है पसंद किया है और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपके आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज़ कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने। बप्पी लाहिड़ी का संगीत, फिल्म का नाम चलते चलते।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रुपए, बाकी दुकानों के मालिकों को 2-2 लाख रुपए और जली रेड़ियों के मालिकों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। शहरी स्थानीय निकाय के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का ही देन है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दी गई। उनके नेतृत्व में देश में व्यापक बदलाव आए हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रविवार को भिवानी के गाँव सुहासड़ा में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए वो भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। सांसद ने कहा कि 2014 से पहले और बाद के भारत का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन 12 वर्षों में क्या बदलाव आया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कल देर शाम फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित सन फ्लैग चौक के सौंदर्यकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 16 मार्केट के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार हो चुकी है।
1: सेक्टर 16 की मार्केट है, उसको एक मॉडर्न मार्केट किस तरीके से बनाया जाए उस पर काम चल रहा है। डीपीआर बन गई है, बजट पास हो गया है, उसका टेंडर लगा हुआ है, जल्दी खुल जाएगा, 1-2 महीने के अंदर उसका काम शुरू कर देगा। और फैजाबाद के अंदर बड़ी दिक्कत है, जब आंधी आ जाए, बरसात आ जाए, तेज हवाएं चल जाए, लाइट गुल हो जाती है, जितनी भी ये तारे सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी।
0: उन्होंने कहा कि बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 2,200 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। श्री विपुल गोयल ने जल भराव की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। केंद्र सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत फरीदाबाद में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, फरीदाबाद जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद सभी ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है, इसे लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और शुद्ध पर्यावरण स्वस्थ समाज की आधारशिला है तथा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करे। आज सोमवती अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर तड़कसार ही देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। सरोवर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा तृप्ति के लिए पिंडदान और जल तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान और दान करने का महत्व कई गुना

0: जाता है। स्नान के साथ साथ ये दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान हेतु भी बेहद विशेष माना जाता है। जींद जिले के ऐतिहासिक एवं महाभारत कालीन गांव पांडु पिंडारा में पवित्र पिंड तारक तीर्थ पर आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण किया। तीर्थ परिसर और आसपास में लगे मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी भी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं। ऐसा क्यों भाई, अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है। हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

तो सादगी शब्द था इस गीत में, जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है, जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है, वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती, न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफ़र वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज़ में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

0: तो कभी था।
1: तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे लेकिन ज़िंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी है जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और देखिए आपके साथ हुआ भी। मंगलसूत्र जैसी चीज़ गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह की तरह तरह की चिड़ियों को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत। उठ सबके

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज़ को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज़्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियाँ हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज़ छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं। तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में साथ एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफ़र का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की इस संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती ज़िंदगी में नज़रअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल ज़रूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, ज़िंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाज़त नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: The implementation of this understanding will help restore peace and stability in the region and ensure the freedom of navigation and commerce. The Prime Minister further added that India looks forward to deliberating on the remaining issues, reaching a sustainable final agreement. The US and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. US President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Meanwhile, benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the afternoon session today following the announcement of a peace deal between the United States and Iran. We have a report.
1: The Lal Street cheered the peace deal as the Sensex climbed 932 points to 76,460, while the Nifty jumped 290 points to 23,912 when reports last came in. In the broader market, at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 as well as Small-Cap 100 indices surged almost 1.6% a short while ago. The easing geopolitical concern boosted investor sentiment, triggering broad-based buying across the markets, with most sectoral indices trading in the green. However, the pharma and healthcare sectors bucked the trend and remained under pressure. In the global crude oil market, Brent crude was trading 4.7% lower at $83.24 per barrel at the time of the last report. Meanwhile, in the bullion market, 24-karat gold was trading 1.5% up at 1,53,250 rupees per 10 gram, while silver was trading 2.4% higher at 2,53,550 rupees per kilogram a short while ago. Zahab Kamal for Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the finance minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal. She said sufficient quantity of fertilizers is available for the Kharif crop season. Ms. Sitharaman further informed that the supply of fertilizers for the upcoming Rabi season will commence from November this year.
2: This year, because of the El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough buffer stocks. Since last year, we've maintained, so there shouldn't be a food shortage. But for farmers, it'll have an impact because this year, his income will be stressed out.
0: Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav today said the main national event of the International Day of Yoga IDY 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the day in New Delhi, the minister noted that the theme for IDY 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. Mr. Jadhav added that yoga plays a vital role in helping people lead healthy, active, self-reliant and mentally resilient lives as they age.
3: Ministry of Culture Dwara.
4: This year, Ministry of Culture will organize special programs at 100 prestigious and iconic spots across the country to mark the International Day of Yoga IDY celebrations. This initiative will connect yoga with our culture and historic heritage to make yoga a national festival. The main event of IDY 2026 will be organized at the Red Road of West Bengal's historic capital city of Kolkata on 21st of June, where Prime Minister Narendra Modi will also lead the celebrations.
0: Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh today commenced commercial flight operations, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. Addressing the inaugural ceremony, Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu said the airport will have the capacity to handle 1.2 crore passengers annually in the first phase, and the capacity is expected to exceed 7 crore annually after its completion. He said the airport will serve as a hub for both domestic and international operations. A group of 170 farmers who gave their land for the airport, led by Jewar MLA Dhirendra Singh, along with others, boarded the first commercial flight from Noida International Airport, Jewar, to Lucknow. In a landmark move to protect children online, the UK government has banned teenager under 16s from accessing high-risk social media platforms. Prime Minister Keir Starmer described the move as a big moment that would bring real change for children and their future, saying the measures are aimed at giving young people their childhood back.
5: Today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. This is not something I do lightly, and I will not present it as cost-free, as if social media has brought no benefits to young people, because clearly that is wrong.
0: In the FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match at Monterrey Stadium in Mexico today. Sweden produced a dominant second-half performance to seal a convincing victory. The win gives Sweden a strong start to their World Cup campaign, while Tunisia suffered a heavy defeat despite reducing the deficit before halftime. In the other event for today, Spain will play against Cabo Verde in their Group H match at the Atlanta Stadium in the United States. The game will start at 9:30 p.m. IST. The 19th Mumbai International Film Festival will begin today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Ravindranath Mandir in the evening. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries. More from our correspondent.
6: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed by Caudal Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvin Bellarmino and Kayla Daniel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under centenary tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal till tomorrow. The weather agency has issued an orange colour warning for thunderstorm conditions over Rajasthan, East Uttar Pradesh, Odisha and West Madhya Pradesh today. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's wholesale price index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
7: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
9: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
7: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
8: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
7: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
10: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमेरिकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
7: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
11: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
7: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
7: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
12: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलाल आबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्न लाल भगत राम ने। सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज़, फिल्म का नाम दर्द।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप?
1: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
2: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
1: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
2: अच्छा लगता है।
1: तो चलिए विषय बता दें आज के।
2: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
1: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
2: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में, मतलब ये एक गंभीर विषय है। हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
1: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफ़ी मांग लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
2: जी हाँ, उनको भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
1: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतज़ार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए?
2: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है।
1: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है, और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े।
2: वही तो, बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
1: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयो और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
2: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
1: और अब क्या करना है?
2: एक गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये,
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग तीन।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी।

0: कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
2: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
3: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
4: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
2: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
1: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
2: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
5: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
2: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
5: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
2: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे

0: रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
1: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
2: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
3: कहां से आते हो भैया?
2: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
3: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
2: शीतला, बहन एक बात पूछूं, बताओगी?
3: हाँ।
2: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
3: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया। बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली,
4: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है। ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे, अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
3: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
2: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
3: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
0: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
2: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
0: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
5: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
6: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
7: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
6: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
7: जी।
6: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
7: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज़ है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना, तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: और ना? दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है। क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए। क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़े अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे, या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ
0: काम कर रहे हैं।
1: ऐसा हो जाता है। उनकी, बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है, कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है, और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है, कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़ द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
1: वो
0: है।
1: बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: अब क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: गीत

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नेने,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है, लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपम्प वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है, तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता है, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह है, हाँ, और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबाल कर छान कर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: साथी लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़ सावन भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए? आप एक गाना सुना,
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध

0: सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है, और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
1: और वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है हाँ। इस बारे में पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
0: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
1: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं हाँ। वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना वो कड़क
0: रहती है, हाँ। है जो खाने में भी मजा आता है।
1: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: सखी सहेली, सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

Petara. पिटारा में आज सेहतनामा।

सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष

0: ने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है। वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहत नामक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी, तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए, हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ।
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
0: जाग जाएं
1: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
0: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
1: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके।

दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी।

0: है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा,
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एकाध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना,
1: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
0: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं
0: और कितना खा रहे हैं,
1: उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी, जी।
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की, मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उसपे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं, या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल, टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
0: जी,
1: वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी, पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक
1: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं, या कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते
0: हैं।
1: पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: यह आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं, तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
0: जी।
1: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है, यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है और वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
2: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
3: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
2: विचलित नहीं करेंगी।
3: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
2: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
3: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाएगी, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
2: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
3: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
2: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
3: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
2: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
3: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
2: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
4: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

0: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है, या किसी वाहन की आवाज आ रही है, या पंखे की आवाज आ रही है, या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं, वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
0: और फिर तो से अपना काम करना,
1: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
1: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
0: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
1: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
0: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
1: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है,

अर्दा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: छह गीता।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, लेकिन पहले गुमशुदा से संबंधित सूचना। मुकदमा नंबर 69 दिनांक 8/6/2026 धारा 127(6) BNS थाना झांसा जिला कुरुक्षेत्र की ओर से माया देवी उर्फ अमनदीप उम्र 30 साल पत्नी जसपाल अपने लड़के सुखमान देसवाल पुत्र जसपाल को लेकर गांव सराय सुखी थाना झांसा जिला कुरुक्षेत्र से दिनांक 8/6/2026 को लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। माया देवी का हुलिया इस प्रकार से है, रंगे हुआ, लंबाई 5 फुट। इसने लोअर और वह टी शर्ट पहनी हुई है और गले में लाल रंग की चुन्नी भी पहनी हुई है। इनका लड़का सुखमन, जिसकी उम्र है लगभग 6 साल, रंग गेहुआ, जिसने सफ़ेद टी शर्ट व निक्कर पहनी हुई है। इन दोनों से संबंधित कोई भी सूचना अगर किसी को भी मिले तो SI पवन कुमार 595 GGM थाना झांसा कुरुक्षेत्र से संपर्क करें और इन दूरभाष नंबर पर संपर्क करने का प्रयत्न करें 9812582123, दूरभाष नंबर 7056700817। एक अन्य सूचना गुमशुदा से संबंधित, मुकदमा नंबर 197 दिनांक 7/6/2026 धारा 127(6) BNS थाना सदर पेहुआ जिला कुरुक्षेत्र की ओर से गुमशुदा लड़का जसविंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह, जो दिनांक 2/6/2026 को गांव ठेरा गुलडेहरा

थाना सदर पेहवा जिला कुरुक्षेत्र से लापता है। इसका हुलिया इस प्रकार से है, रंग गेहुआ, लंबूतरा चेहरा, पतला फुर्तीला शरीर, इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, इसका कद 5 फुट 9 इंच है और उम्र लगभग 20 साल है। इससे संबंधित कोई भी सूचना अगर किसी को मिले तो पुलिस चौकी गुमथला गढ़ू थाना सदर पेहवा से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई।

और अब हमारे केंद्र से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व वृहद द्रोह व्यवहार जागरूकता दिवस। गीता संदेश आप सुन सकते हैं शाम 6:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 6 से श्लोक 11 से 15 की व्याख्या। व्याख्याकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। 6:30 पर कार्यक्रम होगा अन्नदाता और ग्राम संसार। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:00।

7:30 पर कार्यक्रम होगा जय जवान और 7:45 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। कुछ बातें कुछ गीत, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8:00।

आपकी फरमाइशी पर फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। और छाया गीत ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर, आपके लिए 9:15 पर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। ये दोनों कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किए जाएंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को योग माया की प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों इस गीतों भरे कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म सैयारा के इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है फहीम अब्दुल्ला ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इस गीत का संगीत दिया है तनिष्क बागची और गणेश वाघेला ने।

आइए सुनते हैं फिल्म साजन से गीत, जिसे गाया है अनुराधा पोडवाल ने। इस गीत का संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

फिल्म जलेबी के इस खूबसूरत से गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को आपके दोस्त विशाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम सुनवाएंगे आपकी फरमाइश गीत, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है युवा फरमाइश। इसके साथ ही आप सभी को जानकारी दी जाएगी विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर, और कुछ रोजगार समाचार से भी आप सभी को अवगत कराया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमें आई है बीड शहर महाराष्ट्र से। फरमाइश करता है नंद किशोर, संगीता घाटे, साक्षी, जय श्री अंजलि देवी, बाला साहेब। आइए आप सभी को सुनाना चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से। फरमाइश करता है गुलाबदास राजादास रानी मानिकपुरी। आइए आप सभी श्रोताओं को सुनाए चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हाय दोस्तों, सभी को जानकारी दिए चलते हैं विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। दोस्तों, ये दिन हर साल 15 जून को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों को बुजुर्गों के साथ होने वाले गलत व्यवहार के बारे में जागरूक करना है। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके परिवार और समाज को आगे बढ़ाया, इसलिए उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। कुछ बुजुर्गों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें उनकी बातों को महत्व नहीं देते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और इसी दुर्व्यवहार से जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो सर, ऐसे व्यवहार से बुजुर्ग दुखी और असुरक्षित महसूस करते हैं। आज के समय में कई परिवार छोटे हो गए हैं। व्यस्त जीवन के कारण लोग अपने बुजुर्गों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, इससे वे अकेलापन महसूस करते हैं। हमें अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अंत में हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। उनका अनुभव और ज्ञान हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है शाहदरा दिल्ली से। फरमाइश करता है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष, चैतन्य, मेघा। आइए आप सभी की सुनवाई चलते हैं कि फरमाइश पर ये गीत था।

आइए दोस्तों आपसे भी कुछ रोजगार समाचार से अवगत कराए चलते हैं। एनटीए द्वारा सीएसआईआर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 है। इसके साथ ही राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। उपयुक्त अभ्यर्थी इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कूल लेक्चरर के स्पेशल एजुकेशन की भर्ती प्राप्त हुई है। पदों की संख्या की बात करें तो कुल पद 121 है। वह आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। इसके साथ ही आप यूजीसी नेट के लिए एग्जाम सिटी जारी की जा चुकी है। जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वे यूजीसी के एनटीए की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके एग्जाम सिटी अपनी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ रोजगार व प्रवेश संबंधी सूचनाएं। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है जैन मंदिर कुरावली से। फरमाइश करता है राशिद हुसैन नसरीन नौरीन असाना और मोहम्मद कैफ। आइए आप सभी को सुनाना चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है चकला बाजार शहर पंजाब से। फरमाइश करते हैं पप्पू राजा, संगीता, महक, सुनीता रानी, आरजू, हसमुख लाल। आइए आप सभी को सुनाना चलते हैं इनकी फरमाइश पर आज का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी और प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: तेलशोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी

0: आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Addressing a joint press conference after the talks, Mr. Modi said India and Slovakia have decided to elevate ties to the status of comprehensive partnership.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: Prime Minister Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. He said an MOU has also been signed on digital technology to open new avenues of cooperation between the two countries. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, digital transformation and advances in artificial intelligence, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Later in a social media post, Prime Minister Modi said his meeting with Prime Minister Fico is a very special moment for the India-Slovakia friendship. In a social media post, Mr. Modi said that the talks between both leaders covered cooperation in sectors like automobiles, railways, advanced manufacturing and green technology. The Prime Minister noted that the India-EU Free Trade Agreement will also add momentum to the India-Slovakia partnership. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. India has welcomed the understanding reached between the United States and Iran on ending the conflict in West Asia and opened the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said, India hopes that the implementation of this understanding will help restore peace and stability in the region and ensure the freedom of navigation and commerce. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. The benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of nearly 1%. Investor sentiment improved following the announcement of a peace agreement between the United States,

0: and Iran. The Sensex surged 736 points to close at 76,264, while the Nifty jumped 231 points to settle at 23,854. The government has said that all refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories and maintaining sufficient stocks of petrol and diesel. Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, was addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the LNG carrier Disha, with 62,370 metric tons of cargo, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to reach the Dahej port in Gujarat on Thursday. The Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. Addressing the inaugural ceremony, Union Civil Aviation Minister K. Ramamohan Naidu said that the airport will serve as a hub for both domestic and international operations. Railways has approved a 201 crore rupee Kavach project for the Ambala division of Northern Railway. Kavach is an indigenously developed automatic train protection system designed to enhance operational safety. Railways has also approved 140 crore rupee Kavach project for the Ahmedabad division in Gujarat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mid-Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that though the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal, however, sufficient quantity of fertilizers is available for the Kharif crop season. In the FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in the Group F match in Mexico today. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले तीन लोगों के परिवार को 10-10 लाख रूपये की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है। और हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। यह देश के विमानन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों का संचालन करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जेवर हवाई अड्डे से फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और पलवल क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले तीन लोगों के परिवार को 10-10 लाख रूपये, पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रूपये, अन्य दुकानदारों को 2-2 लाख रूपये और जली रेहड़ी के मालिकों को 50-50 हजार रूपये की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा,
2: मैंने उसी दिन जिस दिन ये आगजनी हुई थी कहा था कि जिनकी आगजनी के अंदर मृत्यु हुई है उन परिवारों को 10-10 लाख रुपया हम देंगे। इसमें अमन कुमार, सन ऑफ श्री जगदीश और रोहित खुराना है और कपिल कुमार है। जो नुकसान यहाँ हुआ है सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जान की भरपाई नहीं हो सकती। थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु हमारा पूरा

0: सहयोग इनके साथ है। और इसके बाद जो यूएलबी विभाग है वो भी इसका आंकलन कर रहा है और उस आंकलन के बाद और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी।
1: शहरी स्थानीय निकाय के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा, क्योंकि भारत का 25-30% पेट्रोलियम हॉर्मूज जल डमरू मध्य के रास्ते ही आता है और युद्ध की वजह से पोतों की आवाजाही प्रभावित थी। श्री विज आज अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू होने के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि SIR चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है।
2: देखिए, SIR चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, पिछले कई साल से हुआ नहीं था। जो लोग बदल के चले गए, जिनकी 2002 के बाद मृत्यु हो गई, उनके नाम नहीं कटे। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया जाता है कि गलतियां मलतियां करके अपने नाम से जुड़वा ली, जबकि वो मतदाता है नहीं। चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है, हम तो स्वागत करते हैं और हर नागरिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। BLO हालांकि जाएंगे घर घर, लेकिन ठीक ठीक जानकारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि ठीक।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति ईंधन और दवाओं के दाम में बढ़ोतरी का सामान भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। भारत में विकसित देशों के मुकाबले दाम में काफी कम वृद्धि हुई है। वे आज कैथल में भाजपा के जिला स्तरीय सम्मान समारोह में मीडिया से बातचीत कर रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि सुरजेवाला मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल बातें करते हैं और महंगाई पर कोरे बयान देते हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यकर्ताओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के विरोध पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रहा है।
3: आज हम वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं और जितने हमारे घुसपैठ ये दूसरे देशों से, स्पेशली बांग्लादेश से आके भारत के लोगों के जो अधिकारों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, अगर उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का काम कर रहे हैं तो विपक्षियों को क्यों तकलीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखो तो किस तरीके से लाखों लोग वहाँ पर बंगाल से आकर हमारे जो पश्चिम बंगाल के भारतीय हैं उनके अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं।
1: इससे पहले भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पानीपत प्रभारी अशोक गुर्जर, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज जींद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले खेल मंत्री ने जिला ग्रामीण विकास कार्यालय के प्रांगण में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री गौरव गौतम ने बताया कि आज की बैठक में कुल 11 मामले रखे गए, जिनमें से 9 मामलों का मौके पर ही स्थायी समाधान कर दिया गया। शेष 2 मामलों को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखा गया है और संबंधित उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के एक पुस्तकालय का नाम बदलकर अटल पुस्तकालय किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा,
4: दोनों हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। महापुरुषों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, महापुरुष देश की धरोहर होते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को महापुरुषों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
1: केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के सहयोग से हिसार जिले के गाँव मुकलान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पुष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाए गए इस राष्ट्रीय शिविर की समाप्ति पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य किया। शिविर के संयोजक नरेंद्र दुहन ने बताया कि शिविर में विभिन्न राज्यों से 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
5: इस शिविर में 7 राज्यों से 200 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मध्य प्रदेश से 9 बच्चे और छत्तीसगढ़ से 9 बच्चे, उत्तराखंड से 9 बच्चे, पंजाब से 9 बच्चे, हिमाचल प्रदेश से 9 बच्चे और 100 बच्चे हरियाणा के थे और 100 बच्चे अलग अलग राज्यों से थे। सभी बच्चों ने गांव में जाकर के महिलाओं से बात की, हमारे कल्चर को जाना, हमारे पशुओं को देखा, लोगों से मिले, बातचीत की, हमारे जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर चर्चा की। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों का व्यक्तित्व विकास और अनेकता में एकता।
1: शिविर में भाग लेने पहुंची छात्राओं ने कहा कि उन्हें अलग अलग राज्यों की संस्कृति, बोली, भाषा, खानपान व पहनावे आदि के बारे में जानने व समझने का अवसर मिला।
6: मेरा नाम जानवी और मैं मोगा पंजाब से आई हूँ। यहाँ NIC ने हमें एक मौका दिया और मिलजुल के काम करने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी जैसे स्टेट से हम मिले और हमें कल्चर, खानपान और ये सब जानने को मिला।
1: हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर आज यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिसार हवाई अड्डे के निदेशक OP सैनी ने बताया,
7: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। सबसे पहले हमने इसमें वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया, उसके पश्चात हमने इस एयरपोर्ट पे काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ को हमने सम्मानित किया, उसके पश्चात हमने हिसार एयरपोर्ट पे कार्यरत जितने भी वुमेन्स है, महिला जो हमारी कर्मचारी है जो एविएशन सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान किया। हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया।
1: श्री सैनी ने कहा कि आज हवाई अड्डे पर यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें स्वागती किट भी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रूपये की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
8: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गीता संदेश। इसमें आज आप सुनेंगे अध्याय 6 से श्लोक 11 से 15 की व्याख्या। व्याख्याकार होंगे डॉ. विनोद कुमार शर्मा।
9: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 11 से आगे की व्याख्या। सुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। हे अर्जुन, शुद्ध भूमि में समतल भूमि, न अत्यधिक ऊपर व न अत्यधिक नीचे, चैलाजिनकुशोत्तर आसन स्थित करें। चेला जिन कुशोत्तर से तात्पर्य कुसा, कृष्ण, मृगचर्म व कम्बलादि वस्त्रयुक्त आसन से है। यहाँ ध्यान योग के साधन में प्रयुक्त आसनादि का विधान बतलाया गया है। सुचो देशे का तात्पर्य है मलादि दोष रहित, सुसिर रहित, सुगंध युक्त, दुर्वा पुष्प वृक्षादि के आवरण से युक्त भूमि, देवालय, निज ग्रह अथवा जल के निकटतम प्रदेश ध्यान हेतु उत्तम व पवित्र कहे गए हैं। नात्युच्छ्रितम नातिनीचम का अर्थ है अत्यधिक ऊपर अथवा अत्यधिक गर्त स्थान में भी आसन को स्थापित न करें, जहाँ से सूर्य चंद्रादि ग्रहों का उदयास्त दर्शन हो सके अथवा क्षितिज का दर्शन हो सके, वह आधार आसन की स्थापना हेतु उपयुक्त कहा गया है। चैलाजिन कुशोत्तरम अर्थात यहाँ आसन का लक्षण कहा गया है। कृष्ण, मृगचर्म से बना आसन ऊष्मा का सुचालक होने से उत्तम कहा गया है। इसके अतिरिक्त कपास, ऊर्ण आदि का कंबल आसन अथवा कुसाओं से बना हुआ आसन ध्यान हेतु उत्तम आधार कहा गया है। दुर्वा का भी आसन उत्तम रहता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोन में बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है। शिलापट्ट अथवा सीमेंटेड आसन ध्यान

0: हेतु उपयुक्त नहीं है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। हे अर्जुन, उस आसन पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रिय क्रियाओं को वश में किया हुआ वह योगी अंतकरण की विशुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। यहाँ मन को एकाग्र करने से तात्पर्य है कि मन को किसी प्रतीक, मूर्ति, देव प्रतिमा, तारागण अथवा किसी आधार पर मन को टिकाने का अभ्यास करे, क्योंकि मन का स्वरूप गति ही ऐसी है कि वह किसी आधार के बिना टिक नहीं सकता। योग शास्त्र के अनुसार मन प्राणवायु के गमनागमन का साक्षी बने। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में मन स्थिरता का अनुभव करके यत हो सकेगा। यत होने पर इंद्रिय का शांत होना स्वाभाविक है। इस श्लोक में उपविश्यासने शब्द के दो अर्थ है। प्रथम, आसन पर बैठकर, अर्थात पूर्व श्लोकानुसार जिस प्रकार का आसन कहा गया है, वस्त्र अथवा कपास, ऊर्ण, कुसा, दुर्वा आदि के आसन पर बैठना। उपविश्यासने का अर्थ है आसन में बैठकर, अर्थात योग शास्त्रोक्त आसन की अवस्थाओं में निमीलित चक्षु व मौन होकर सुखपूर्वक पद्मासन या स्वस्तिकासन में बैठना। बद्धासनस्सन निमीलित नयनो मौन है। स्थिर सुखम आसनम, इस श्लोक में मन व चित्त दोनों का उल्लेख किया गया है। चित्त व मन दोनों का अलग अलग कार्य भी कहा गया है। मन इंद्रियों को क्रियाओं की ओर प्रेरित करता हुआ उन्हीं के साथ गतिमान भी रहता है और चित्त इंद्रिय की क्रियाओं का अनुभव करता हुआ बुद्धि के संयोग से विवेकी बनकर समाहित होता है। इस प्रकार इन श्लोकों में ध्यान योग हेतु आवश्यक आसनादि का उल्लेख किया गया है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्षेनासिकाग्रम स्वम दिशस्थानवलोकयन्। हे अर्जुन, शरीर, सिर और ग्रीवा को समान एवं अचल व स्थिर करते हुए दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के अग्रभाग को देखे, अर्थात मन को नासिका के अग्रभाग में ही स्थिर करें। पूर्व के श्लोकों में कहे गए आसन पर स्वयं को उपस्थित कर मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के इस प्रकार के मार्ग का अभ्यास योग्य गुरुजनों के निर्देशन में निश्चित फलदायी होते हैं। कुछ को मन की एकाग्रता पूर्व जन्म के अभ्यासों से स्वतः ही अथवा जन्म से ही सिद्ध होती है। सुखदेव आदियों को जन्म से ही एकाग्रता सिद्ध थी। अन्यों को एकाग्रता की सिद्धि हेतु अभ्यास करने होते हैं। यद्यपि योग दर्शन में अनेक ऐसे सूत्र हैं जिनके अभ्यास से एकाग्रता सिद्ध हो सकती है, तथापि श्रीमद् भगवद गीता समस्त उपनिषदों का सार होने से स्वतः परिपूर्ण योग शास्त्र है। अपने सभी विषयों को स्वतः परिमाणित करने का सामर्थ्य है श्रीमद् भगवद गीता में। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और परायण होकर स्थित होवे। यहाँ सर्वदा प्रसन्न अंतकरण व शांत चित्त में हेतु ब्रह्मचर्य व्रत है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में, समाज शास्त्र में, धर्मशास्त्र में ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम रखा गया है। ब्रह्मचर्य परिपालन से अन्य आश्रमों का नियंत्रित व सुखद होना निश्चित है। ब्रह्मचारी की कामवासना संयमित होने से मन अविचलित होता है। अविचलित मन से पाप नहीं होते व पाप नहीं होने पर भय मुक्त दशा स्वतः उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कामी विचारों को त्याग देना, वीर्य संधारण करना, ज्ञान की उपासना करना। साधक हेतु ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हुए गुरु के समीप रहकर विद्या का अभ्यास करना ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य कहा गया है। ब्रह्मचारी को पाप, भय, अप्रसन्नता आदि दोष उसी प्रकार त्याग देते हैं जिस प्रकार पूंजीपति को दारिद्र त्याग देता है। ब्रह्मचर्य के नियम पूर्वक परिपालन से अंतःकरण प्रसन्न व भयहीन हो जाता है, मन संयमित होकर परमात्मा के प्रति लगने लगता है। इसलिए अग्रिम श्लोक में कहा है, युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार नियत मानस योगी, वसी मन वाला, निरंतर मुझ में स्वयं को लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परा शांति को, परमानंद को प्राप्त करता है। यहाँ आनंद की इस अवस्था को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभव जन्य विषय है। इसे वही समझ सकता है जिसने इस अवस्था का अनुभव किया हो। यहाँ युञ्जन् एवं कहा है, जिसका अर्थ है पूर्वोक्त श्लोक में कहा गया ब्रह्मचर्य, अर्थात इस प्रकार ब्रह्मचर्य से युक्त होकर सतत योग मार्ग का अभ्यास परमानंद का हेतु है। बड़े दुख की बात है कि आज युवाओं में, छात्रों में ब्रह्मचर्य एक मजाक का विषय बना है। चरित्र की चर्चा मानो युगों पुरानी बातें हैं। इसलिए आज युवाओं में निराशा, शोक, संताप, आत्महत्याएं बढ़ रही है। चरित्रता व पवित्रता जैसे विचार युवाओं में समाप्त प्राय है। वो यदि ब्रह्मचर्य का महत्व समझते हुए कर्म करने लगें तो व्यभिचार व महिलाओं के प्रति अनादर, दुराचार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। वह पुनः उनका जीवन योग मार्ग से आनंदमय हो सकेगा। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्री गीता जी के 6 अध्याय के श्लोक 11 से 15 तक की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। इसमें आज आपने सुना अध्याय 6 से श्लोक 11 से 15 की व्याख्या। व्याख्याकार थे डॉ. विनोद कुमार शर्मा। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुओं में खनिज मिश्रण के महत्व पर, और साथ ही साथ भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे अरहर की बिजाई पर। साथ ही प्राकृतिक खेती में जानकारी लेंगे जैविक खाद बनाने की विधि पर, और साथ ही करवाऊंगे भाइयों का मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों की चर्चा तय पशु आहार में खनिज मिश्रण के महत्व पर। किसान भाइयों, हम खेती बाड़ी के साथ साथ जो है पशुधन भी रखे हैं, और अपना पशुधन जो है वो बड़ा कीमती है, इसलिए अपना जो पशुधन है उसका हमने खान पान है उसका बड़ा ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पर कई बार जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो पशुओं के खाने पीने में जो है चारा का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो साथ में उसको अतिरिक्त जो खनिज तत्व चाहिए उनकी कई बार कमी रह जाए, इसलिए जो पशुओं में आहार में हरे चारे और दाणे के साथ साथ खनिज पदार्थ जो है वो हमने जरूर शामिल करने हैं। और खनिज पदार्थों की जो सही मात्रा है कई बार वो नहीं मिलती पशु ने, तो उसके शरीर में कई तरह के रोग पैदा हो जाए और जिसके कारण पशु का स्वास्थ्य और उसकी दूध देने की जो क्षमता है उसमें भी बहुत कमी देखी जावे है। ज्यादातर देखा जावे है कि जो पशु का शरीर है उसमें भार के अनुसार लगभग 4% खनिज तत्व पाया

तत्व है जिसमें 40 अलग अलग तरह के तत्व शामिल हैं। इन 40 में तो भाइयों 14 जो खनिज हैं वो मुख्य हैं, और ये पशु के आहार में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पशु के आहार में ये खनिज तत्व शामिल होंगे तो हमारा पशुधन जो हो पर्याप्त मात्रा में दूध देगा, साथ में जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और जो ऊन देने वाले हमारे पशुधन हैं तो ऊन की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी। इसमें खास तौर पर भाइयों जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो हैं कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटाशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयोडीन और मोलिबिडेनम। और आमतौर पर भाइयों जो इसमें जो पहले 7 खनिज हैं वो हमारे जो पशुधन हैं उसका तर सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, यानी कि मुख्य जो है खनिज तत्व हैं, और 7 जो है इसमें गौण हैं। हमने जो पशुधन है उस खातर खनिज लवण क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है हमारे पशुओं खातर खनिज लवण, तो अपने देश में जो पाए जाने वाले जो पशु चारा है और जो खाद्यान्न है उसमें खनिज और जो लवण है उनकी मात्रा आम तौर पर कम पाई जावे है, जिससे जो पशुधन है उसके शरीर में जो कम से कम खनिज की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती। और दूसरी ओर भाइयों जो खेती बाड़ी की जो आधुनिक विधि है, रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे खाद्यान्न है उनमें भी भाइयों जो खनिज तत्व हैं उनकी कमी देखी गई है, खासतौर पर मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन और सल्फर इत्यादि की कमी का जो है इसमें ज़्यादा अभाव देखा गया है। और इनकी कमी का प्रभाव भाइयों पौधे की जो बढ़ोतरी है और जो उपज है, चाहे वो पेड़ है, जितने भी हमारे पौधे हैं उनके विकास में भी जो है बढ़ोतरी में ये दिक्कत दे हैं। और साथ ही साथ जब यही हम जो भोजन है अपने पशुओं ने देव हैं तो उनमें भी जो है इन खनिज तत्वों की कमी पाई जावे है। खनिज तत्व न केवल भाइयों जानवरों को सामान्य किस्म का जो चारा है या दाना है उसको दूध में परिवर्तन करने में क्षमता बढ़ावे है, बल्कि जो खनिज है वो हमारे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने भी बढ़ाने में मदद करे है। इसी तरह भाइयों पशुओं को दिए जाने वाले जो खल, चूरी और जो सामान्य खाद्यान्न है उसमें एक तो पशुओं को जो पाचन है उसमें मदद करे खनिज, साथ ही जो कंकालित उत्तक है उसमें भी जो खनिज है वो आधार प्रदान करने का काम कर रहा है। इसके अलावा भाइयों जो प्रजनन और जो मांसपेशी हैं उसमें भी संकुचन में मदद कर रहे हैं हमारे खनिज तत्व, साथ ही दूध के लिए आवश्यक जो खनिज तत्व हैं उपलब्ध करवाए हैं ताकि दूध की मात्रा पशु में बढ़ सके। और पशु शरीर में भाइयों अमल क्षार संतुलन और खून के पीएच मान को भी नियंत्रित करने में मदद कर रहे हैं हमारे खनिज। बात करें भाइयों शारीरिक बढ़ोतरी और दूध उत्पादन खातर आवश्यक खनिज लवण कौन कौन से हैं, तो हमारे जो पशुधन है उसमें पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उसका 80-85% भाग भाइयों कंकाली उत्तक में पाया जाओ है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के जो लवण हैं वो मुख्य रूप से जरूरी हैं। ज़्यादातर खनिज भाइयों पूरे शरीर में एक समान मात्रा में रहे हैं, जिनते शरीर की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो एक रूपता है उस खातर पशु की शारीरिक बढ़ोतरी, उसका स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता की रक्षा खातर जरूरी है। साथ ही भाइयों खनिज लवणों की कमी होने पर आहार में लगातार उपयोग करने से जो है पशुधन में दूध की कमी ये खास तौर पर देखने मिला है। और साथ ही साथ जो इन परिस्थितियों में पशु शरीर में मुख्य कार्य करने वाले जैसे कि पशु प्रजनन है, उनकी शारीरिक बढ़ोतरी है, दूध उत्पादन है, ये सब प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ अनेक रोग जिस तरह भूख न लगना और ज़्यादा उम्र में परिपक्व होना, असामान्य शारीरिक बढ़ोतरी है, दूध उत्पादन में कमी है, प्रजनन क्षमता में कमी है या गर्भ नहीं ठहरना, इस तरह के कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाएं अगर खनिज तत्व की कमी हो जाए, जिनका होना हमारे पशुओं में आजकल एक आम बात देखी जाव है। और इन समस्याओं तक भाइयों पशुओं का बचाने खातर जो है पशुओं को संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और खनिज लवण का होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर देखा जाओ भाइयों जो खनिज तत्व हैं अगर उनकी कमी हो जाए तो खनिज तत्व की कमी तय पशुओं में कई तरह के दुष्प्रभाव देखे जाओ हैं। मुख्य खनिज जिस तरह की कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, गंधक है, सोडियम और क्लोरीन इत्यादि की कमी तय एक तो पशु जो है वो कागज खाना शुरू कर देगा, कागज है, कपड़े हैं, प्लास्टिक की थैली है, हड्डी हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, इस तरह की जो ना खाने वाली चीज़ें हैं पशु न खाना या चाटना शुरू कर दे हैं, तो इसका मतलब है कि पशु में जो खनिज तत्व हैं उनकी कमी होगी है। साथ ही साथ जो पशु है वो खुद का या दूसरे पशु का पेशाब पीना शुरू कर दे हैं और पशु का जो

स्वास्थ्य है और दूध उत्पादन की क्षमता है वो बड़ी तेजी तक गिरनी शुरू हो जाए। और इसी तरह भाइयों, अगर खनिज तत्वों की कमी हो जाए तो उससे जो गर्भवती गाय है या भैंस है उसमें दूध ज्वर नाम का रोग भी उत्पन्न हो जाए और दूध देने वाले जो जानवर हैं उनमें दूध की कमी देखी जावे है। साथ ही पशु थकावट महसूस करने लगेगा और उसकी जो मांसपेशी है वो कमजोर होनी शुरू हो जाए। इसके अलावा जो सूक्ष्म खनिज लवण है उनकी कमी तभी कई तरह के दुष्प्रभाव हम अपने पशुधन में देखे हैं। और जो सूक्ष्म खनिज लवण है जिस तरह लोहा, तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीज, इनकी कमी के कारण एक तो खून की कमी का रोग पशु में उत्पन्न हो जाए जिसने एनीमिया को है, और साथ ही साथ भाइयों मादा पशु का भार जो है वो कम हो जाए, उसका वजन कम होना शुरू हो जाए और साथ ही साथ जो उसका मद चक्र है वो भी अनियमित हो जाए। गर्भ धारण करने की जो क्षमता है उसमें कमी देखी जावे है और बार बार गर्भपात होना शुरू हो जाए। साथ ही पशु चारा कम खाने लग जाए और पशु की बढ़वार रुक जाए, साथ ही साथ बाल कड़े और रुखे होने शुरू हो जाए। आयोडीन की कमी तय बढ़ोतरी और जो पशु का विकास दर है वह घट जाए। साथ ही साथ भाइयों आयोडीन की अधिकता, जो आयोडीन की अधिक मात्रा अगर कम हो जाए तो उससे भाइयों गाय भैंस में जो है गर्भपात की समस्या भी देखी जावे कई बार, और कई बार तो भाइयों मरे हुए या कमजोर या चलने में जो असक्षम बच्चे हैं वो भी पैदा हुए हैं। तो आयोडीन जो है वो एक मुख्य तत्व है जिससे कि जो गर्भित पशु है उसका बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो। इसके अलावा जस्ते की कमी तो भाइयों बाढ़ का गिरना, बाणों की बढ़ोतरी रुकना और त्वचा के अनेक रोग उत्पन्न हो जाए और चारा पचाने की जो क्षमता है पशु की वो भी कम हो जाए। इसलिए भाइयों खनिज तत्वों की जो हमारे पशुधन है उसमें बहुत ज़्यादा जरूरत है और उसकी एक पर्याप्त मात्रा पशुधन तक हमने देनी जरूरी है। अगर पशु पोषक वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जावे तो भार वाली 400 किलोग्राम वाली जो गाय है या भैंस है उसके शारीरिक रखरखाव खातर हर रोज 18 ग्राम कैल्शियम, 14 ग्राम फास्फोरस और 8 से 10 ग्राम नमक की उसने जरूरत पड़े है। इसके अतिरिक्त भाइयों हर 1 किलोग्राम दूध के उत्पादन पर लगभग 3 ग्राम कैल्शियम और 2 ग्राम फास्फोरस और 1.5 से 2 ग्राम नमक की हमने अतिरिक्त जरूरत पड़े है। इसलिए भाइयों पशुओं को जीवन पर्यंत लाभदायक बनाए रखने खातर ऐसा पशु आहार जरूर देवे जिसमें 2 से 3% की दर तय पूरी तरह से खनिज लवण उसमें मिला हो, या फिर भाइयों प्रति पशु हर रोज 30 से 50 ग्राम खनिज लवण या 15 से 20 ग्राम नमक जरूर अपने पशु ने देन दे रहे हैं। इस तरह अगर हम भाइयों एक नियमित मात्रा में हर रोज अपने पशु धनते जो है खनिज तत्व देन दे रहेंगे तो हमारे पशुओं में जो अनेक तरह की समस्याएं हैं वो नहीं आऊंगी और दूध का उत्पादन भी पर्याप्त होगा। तो ये तो ली भाइयों जानकारी पशु आहार में खनिज मिश्रण के महत्व पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में हर 3 में से लगभग 1 महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
2: और भाइयों, खेती बाड़ी में मौसम का बहुत महत्व है और मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं भाई सविंदर शर्मा जी।
3: धन्यवाद विनोद जी। किसान भाइयों, अगर बात करें आज के मौसम की तो आज अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और अगर कल के तापमान की बात करें तो कल ने जो अधिकतम तापमान है वो 37 डिग्री रहने की संभावना है और जो न्यूनतम तापमान है वो रह सका है 28 डिग्री सेल्सियस।
2: और भाइयों, इब करें बात कल की कृषि कार्यक्रम की तो कल है मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आऊं कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम का जो विषय रहेगा कल वो है धान की रोपाई में सावधानियां। और इस विषय में जो जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ रहेंगे वो है डॉक्टर संदीप रावल जी। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुने रागड़ी।

के आड़े मेरी रात कट्या करती, अरे वो भी दिन से याद आड़े मेरी बात कट्या करती, अरे सो सोबर

ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और भाइयों इवले में जानकारी खेत बचाओ अभियान पे। किसान भाइयों खेत बचाओ अभियान भारत सरकार द्वारा मिट्टी की सेहत सुधारण खातर और खेती की लागत कम करण खातर एक प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। और ये अभियान भाइयों हर साल 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। और खेत बचाओ अभियान के तहत भाइयों जरूरी है कि हम मिट्टी का संरक्षण जरूर करें। अत्यधिक रसायन और कीटनाशकों का जो हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हम कम से कम करें। अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और सोयल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं। और मिट्टी की जांच करवाने के बाद हमारे जो खेत हैं हमारी मिट्टी है उसमें कितने रसायन की जरूरत है, कितना कीटनाशक उसमें छिड़काव करना, कितना हमने उसमें उर्वरक डालना है उसकी निश्चित मात्रा भी हम निर्धारित करें। साथ ही भाइयों कम खाद और सही सलाह, यानी कि किसान भाई जो है वो संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करके और जो है सही समय पर उर्वरक का इस्तेमाल करें, कितनी हमने मात्रा लेनी है वो भी निश्चित करें और किस समय हमने डालनी है वो भी हम अगर निर्धारित करेंगे तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और हमारी मिट्टी भी जो है वो सुरक्षित रहेगी। क्योंकि भाइयों हमारे खेत जो है हमारी धरती माँ है वह बांझ होने लग रही है इन रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल से। साथ ही साथ भाइयों हमने प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना होगा और किसान भाई जो है वो धीरे धीरे जो रसायन की खेती है उसको छोड़कर और आहिस्ता आहिस्ता प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की ओर भी बढ़ना शुरू करें ताकि हम अपनी मिट्टी अपना पानी और अपनी हवा न बचा सकें। साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं उन बदलते मौसम खासतौर पर जैसे अल नीनो हैं इनके प्रभाव के अनुकूल अपनी खेती की तकनीक सीखनी पड़ेंगी ताकि जब मौसम में परिवर्तन आवे है जलवायु परिवर्तन हो तो उस समय में हमने किस तरह की फसल उगानी है और किस क्षेत्र में कौन सी फसल बढ़िया रहेगी। साथ ही किसान भाई जो हैं किसान आईडी पंजीकरण पराली प्रबंधन और कम अवधि वाली उन्नत किस्मों की भी जानकारी जो है समय समय पर लेते रहें और जो है इस तरह अगर हम ये सब काम करेंगे साथ ही अंतः फसल चक्कर जरूर अपनावें जिससे जो है खेत में जो है पोषक तत्वों की कमी अपने आप पूरी हो जाएगी और हमने बाहर तक जो है उर्वरक डालने की कम जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह अगर हम छोटी छोटी बातों ने ध्यान रखेंगे तो हम अपने खेतों ने बचा पाएंगे। इसके अलावा भाइयों एक करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अरहर की बिजाई पर। किसान भाइयों अरहर जो है खरीफ मौसम की ज़्यादा पैदावार देने वाली एक दलहनी फसल है और इसकी भरपूर फसल लेने के बाद भाइयों जो गेहूं की फसल है वो भी हमने बड़ी अच्छी मिला है और गेहूं की पैदावार भी बढ़िया देखने मिला है। और अपने हरियाणा प्रदेश में तो भाइयों अरहर और गेहूं का जो फसल है जो फसल चक्कर है ये बहुत बढ़िया साबित हुआ है। और अगर हम उन्नत किस्में ले तो जो अरहर की उन्नत किस्में हैं उसमें है टाइप 21, यह किस्म अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है और 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाए। यह किस्म भाइयों अप्रैल में गेहूं की कटाई के बाद लेकर मध्य जून तक बोई जा सके है, यानी कि अभी समय है हम इसने बो सके हैं। और दाना भाइयों मध्यम आकार का और पैदावार किसान भाई लगभग जो है 22 मण एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। दूसरी किस्म भाइयों इसमें UPAS 120, यह किस्म भी भाइयों 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाए और इसकी ऊंचाई 250 सेंटीमीटर तक चली जाए। दाना मध्यम आकार का और अड़का भूरे रंग का है और पैदावार किसान भाई जो है इसमें लगभग 17 से 19 मण एक एकड़ के हिसाब से ले सका है। एक और किस्म है भाइयों इसमें मानक और यह किस्म भाइयों 135 से 140 दिन में पक कर तैयार हो जाए और यह एक अगेती किस्म है और इसकी ऊंचाई भी भाइयों 200 से 220 सेंटीमीटर तक चली जाए। दाना मध्यम आकार का हल्का भूरे रंग का है और औसत पैदावार किसान भाई जो है वो 18 से 20 मण एक एकड़ के हिसाब से ले सका है। पारस या इसने H81 के नाम से भी जाना है या मानक तक मिलती जुलती किस्म है और इसकी ऊंचाई भाइयों 250 सेंटीमीटर तक चली जाए और 135 से 140 दिन में यह फसल पककर तैयार हो जाए। शुरू की बढ़वार ज़्यादा होने के कारण भाइयों या जो पछेती बिजाई है इनकी जुलाई में भी हम इसकी कर सकते हैं बिजाई और पैदावार किसान भाई जो है 18 से 20 मण एक एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। अरहर की फसल खातर भाइयों खेत की हमने तैयारी करनी है तो उसमें एक तो अच्छी जल निकासी वाली दोमट या हल्की दोमट अम्लीय और क्षारीय रहित जमीन जो है उसका हमने चुनाव करना है, यानी कि जिसका पीएच मान लगभग 7 के आसपास हो और 2 से 3 जुताई करके सुहागा लगा कर अच्छी तरह से खेत ने तैयार कर लें। साथ ही भाइयों जो बिजाई का समय है तो जो सिंचित क्षेत्र है भाइयों उसमें 2 फसल चक्कर हम ले सके हैं,
यहाँ पर टाइप 21 की जो बिजाई है वो मध्य मार्च से लेकर जून के अंत तक कर सके हैं, और UPAS जो है UPAS 120 या मार्च से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक हम इसकी बिजाई कर सके हैं, और मानक और पारस की बिजाई भाइयों जून के मध्य और जुलाई तक भी इसकी हम बिजाई कर सके हैं। एक बात का हमने ध्यान रखना है कि जब हम बिजाई करें तो उससे पहले बीज का उपचार जरूर कर लें, तो राइजोबियम के टिक्के तक बीज का उपचार जरूर करें। 200 मिलीलीटर या 2 कप पानी में 60 ग्राम गुड़ या शक्कर मिलाकर उसका घोल बना लें, और घोल में भाइयों 5-6 किलोग्राम बीज उपचारित करें और उसने छाया में सुखा कर फिर उसकी बिजाई करें। बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों 40-45 सेंटीमीटर कतार तक कतार की दूरी रखें और 5-6 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से बोएं, और मिश्रित फसल की दशा में भाइयों फासला जो है कतार तक कतार का 50 सेंटीमीटर रखें। और खाद की मात्रा की बात करें तो भाइयों मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी की जांच के बाद जो है जो भी सिफारिश करी जावे उसके अनुसार भाइयों उसमें खाद का इस्तेमाल करें। तो ये तो ली जानकारी भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत अरहर की बिजाई पर, और इबले में जानकारी प्राकृतिक खेती में जैविक खाद बनाने की विधि पर। किसान भाइयों गोबर की खाद आमतौर पर सारे किसान भाई बनाए हैं, लेकिन गोबर की जो हम कुरड़ी बना रहे हैं उसमें हमने एक बात का ध्यान रखना है कि गोबर की जो खाद है उसने हम किसी ऊंची जगह पर या जिसने हम अच्छी तरह से ढक सकें इस तरह हमने जो है उसकी कुरड़ी बनानी है, क्योंकि अगर बारिश का पानी आओगा तो उसमें जो है अगर हमने डूंगी जगह में गिर रखी है गोबर तो वह पानी के साथ बह जाएगी सारी, और पेड़ के नीचे या हल्की छाया वाली जगह पर जो है यह सब तो बढ़िया रहा है। साथ ही गोबर के ढेर में भाइयों कोशिश करें कि उसमें शीशा लोहा प्लास्टिक या ना गलन वाली कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। हाँ, उसमें हम रसोई का अपना बचा खुचा जो सामान है सब्जियाँ की छिलके हैं या पशु का मूत्र है वो सब डाल सकते हैं। साथ ही गोबर के ढेर की ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो भाइयों ऊंचाई 2 फुट और चौड़ाई 5 फुट तक ज़्यादा ना रखें, और लंबाई हम जितनी चाहो उतनी रख सकें। गोबर के ढेर में भाइयों नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तो गर्मी के मौसम में नमी का खास ध्यान रखें, इसलिए भाइयों ऐसी जगह या खाद बनाएं जहाँ पानी की सुविधा भरपूर हो। साथ ही अगर गोबर के ढेर ने ढक कर रखा जावे तो ज़्यादा बढ़िया है। लिपाई तो जो है खाद जल्दी तैयार हो जाए, और लिपाई न कर पाओ तो भाइयों काले और मोटे प्लास्टिक या पॉलीथीन तो उसने ढक दें, और 10-15 दिन जो है ढेर ने 10-15 दिन के बाद ढेर ने पलटें और फिर तो उसने ढक दें ताकि खाद जो है जल्दी बनकर तैयार हो जाए। और अच्छी बनी खाद जो है वो दानेदार सुनहरी और सुगंध वाली हो है जो कि चाय के दाने जैसी दिखाई दे है, और इसका तापमान भी सामान्य रहेगा। सही खाद जब तैयार हो जाए तो उसने अगर मुट्ठी में बंद करें तो यह लड्डू सा बन जाएगी, और जिस तरह मुट्ठी खोल लेंगे फिर भी खर जाएगी। तो यह जो है पहचान है कि खाद हमारी बिल्कुल सही दानेदार तैयार होगी है। खेत में डालने के बाद इसने मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, क्योंकि खुली जगह में और धूप में भाइयों इसके जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए जिस तरह हम खेत में डालना साथ के साथ इसने मिट्टी में मिला दें। और घन जीवा

इसमें किसान भाई जो है अपनी खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान किसी भी समय ले सके हैं। या तो पशुधन से संबंधित कोई समस्या है, फसल से संबंधित कोई भी समस्या है, तो इस समस्या का जो है समाधान किसान भाई जो है फोन कॉल के माध्यम से ले सके हैं। और फोन नंबर है 1551। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सारे बाण भाइया ने एक बार फिर विनोद भाई की राम राम। भाइयों, ग्राम संसार कार्यक्रम की शुरुआत करें एक रागणी थे।

मेरे तलोक में भी साथ रहे ईसा, कर्म ही मित्र होया करे सहज।

सेवासना का धंधा हो, परलोक में शत्रु कौन बता, जब कर्म

0: प्रसन्न करो युधिष्ठर बोले सही जवाब हरिया होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठर बोले सही जवाब हरिया होगा।
1: ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे गुलाब सिंह खंडेलवाल।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। COVID-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।
1: और भाइयों, इवलेवन जानकारी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पे। भाइयों, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को दुनिया भर में मनाया जावे है और इसका मुख्य उद्देश्य है बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार। और ये दुर्व्यवहार भाइयों किसी भी तरह का हो सके, जिस तरह शारीरिक भी हो सके है, मानसिक भी हो सके है, आर्थिक भी हो सके है, भावात्मक भी हो सके है, या बुजुर्गों की उपेक्षा करना। और इसके बारे में भाइयों जागरूकता बढ़ाना और एक सुरक्षित सामाजिक जीवन तैयार करना, यही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। बात करें भाई उसके इतिहास की और इसकी मान्यता पे, तो इस दिवस की शुरुआत पहली बार जून 2006 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज INPA और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करी गई थी। और इसके बाद भाइयों दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको आधिकारिक मान्यता दे दी। अगर दुर्व्यवहार के प्रकार की बात करें तो भाइयों यह जो दिवस है लोगों को यह पहचानने में और शिक्षित करने में मदद करे है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कई रूपों में हो सके है, जिस तरह उनको शारीरिक चोट पहुंचाना, उनकी संपत्ति हड़प लेना, डरावा या धमकावा देना, या फिर उनकी जो बुनियादी जरूरत है उनकी अनदेखी करना। और इस दिन का जो आधिकारिक जो प्रतीक है वो है बैंगनी रंग। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है भाइयों, इस दिन का जो लक्ष्य है वो समाज को यह याद दिलाना है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका उत्पीड़न एक गंभीर सामाजिक और मानवाधिकार का मुद्दा है और सभी को मिलजुल कर जो है बुजुर्गों के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा जरूर करनी चाहिए। साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, या जो किसी बुजुर्ग के लिए अगर हम मदद तलाश कर रहे हैं तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ले सके हैं। क्योंकि भाइयों जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है और पुराने समय से ही जो है हमारे जो समाज में, हमारा जो भारतीय समाज है, इसमें संयुक्त परिवार का बहुत बड़ा महत्व रहा है। क्योंकि अगर परिवार संयुक्त थे पहला, तो संयुक्त परिवार में जो घर के सारे बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी हैं, तो वो हमारे सबका ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे, और जो घर के सदस्य हैं वो भी अपने बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखते थे। लेकिन जब तक परिवार एकाकी हो गए हैं तो एकाकी परिवार में जो माँ बाप हैं वो काम काज खातर घर तक बाहर चले जाएं, क्योंकि आजकल जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर है उसमें माँ बाप जो हैं वो दोनों कमाने लग रहे हैं, तो घर पर जो बुजुर्ग हैं वो अकेले रह जाएं, ना उनकी कोई सेवा करना रहता, ना उन्हें कोई पानी पूजना रहता, तो इसमें उन बुजुर्गों का किस तरह ख्याल रखें। तो कई तरह की जो है बुजुर्गों के साथ घटनाएं घटे हैं, या तो उनका अकेलापन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, या फिर जो है उनके साथ जो है पैसे के मामले में भी उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। इसके अलावा बुजुर्गों के साथ मारपीट करना ये भी एक तरह का दुर्व्यवहार है। तो ऐसे में जो है हमें इस समस्या का जो है समाधान ढूंढना है, और वो समाधान हमें मिलेगा अगर हम सही सामाजिक प्राणी हैं तो हमने अपने बुजुर्गों की तरफ ध्यान देना होगा, अपने माता पिता हैं उनका ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और जब हम घर पर नहीं होंगे तो उस समय जो हमारे बच्चे हैं उनका वो ध्यान भी रखे हैं, उनके खान पान का ध्यान रखे हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे बच्चों का जो अकेलापन है उसने भी वो साथ में दूर करे हैं। तो हमने इन सब बातों का ध्यान रखना है कि वो बुजुर्ग होने के बावजूद भी जो है हमारे परिवार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाग निभा रहे हैं, तो ऐसे में हमने उनका खास तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि इस समय वो लाचार हैं बुजुर्ग होने के बाद, तो उनकी इस लाचारी में जो है हमने हर कदम पर उनके साथ खड़े रहना है। तो ये तो ली भाइयों जानकारी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पे, और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन।

ये तो सुना भाइयों ने, फिल्मी लोकगीत और फिल्म थी मारी धरती मारी माँ। और भाइयों इब करा चर्चा पर्यावरणीय शिक्षा समाज की एक जरूरत एक आवश्यकता। भाइयों पर्यावरण शिक्षा वास्तव में पर्यावरण के प्रति जागृति और बोध पैदा करना है, साथ ही जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके प्रति जनमानस को में जागरूकता और साथ ही संवेदनशीलता भी पैदा करना ही एक पर्यावरणीय शिक्षा है। और पर्यावरण प्रदूषण भाइयों एक छोटी मोटी समस्या नहीं भाइयों, एक विश्वव्यापी समस्या है जिसका हर एक स्वरूप में मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा लग रहा है। आज जहाँ तक देखें, एक तरफ शहरी वातावरण है, औद्योगिकरण है, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी तरह के प्रदूषण हम अपने आसपास देखने लग रहे हैं, चाहे वो पानी का प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण है। इसी तरह हमारे जो गाँव हैं वो भी इस समस्या से अछूते नहीं रहे और हमारा जो जीवन है वो जो भाग दौड़ में चल रहा है और इसी जीवन की भाग दौड़ में भाइयों जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहा और इसी कारण भाइयों पर्यावरण लगातार प्रदूषित होने लग रहा है। और इस गंभीर समस्या के प्रति हमारे समाज, चाहे वो शहरी हो या अपना जो ग्रामीण है इलाका है, उसमें भी जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। खास तौर पर जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है

क्योंकि जो आज के हमारे विद्यार्थी वही देश का भविष्य भी हैं और आने वाले समय में उन्हें जो है इस पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। तो हमने अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पर्यावरणीय शिक्षा उसको शामिल करना बहुत जरूरी है, जो पर्यावरण को बचाने के अलावा उन्हें उनके दायित्व को भी समझाने में मदद करेगी कि जिससे भविष्य में पर्यावरण हानि की संभावना कम तक कम करी जा सके। और भाइयों, पर्यावरणीय जो शिक्षा है वो देते समय इस बात का भी हमने ध्यान रखना होगा कि यह शिक्षा ऐसी हो जो हमारे विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति ज्ञान और उसके प्रति जागरूकता पैदा करें, और उसके लिए कई बातों का हमने ध्यान रखना जरूरी है, जिस तरह विद्यार्थी द्वारा प्रकृति का अनुसरण करना और उसके प्रति संवेदनशीलता का उसमें भावना का होना बहुत जरूरी है। साथ ही विद्यार्थी में जो है निरीक्षण करना, अनुभव करने का ज्ञान भी हो, ताकि वो समझ सके कि प्रकृति के साथ जुड़ना कितना जरूरी है और पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और एक बात और ध्यान योग्य है कि पर्यावरण शिक्षा जो है कोई नया अनुशासन नहीं है, बल्कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली का एक विस्तार है। और एक कहावत भी है कि अगर तुम 1 साल का नियोजन करके चल रहे हो तो चावल उगाओ, और अगर 10 साल का हम नियोजन करके चल रहे हैं तो पौधे उगाओ, और अगर इससे भी अगर लंबे समय तक का नियोजन करना है तो लोगों को शिक्षित करो। और पर्यावरण के प्रति जो शिक्षा है वो एक ऐसी शिक्षा है जो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है उनकी रक्षा करने में मदद करेगी। और हमारे जो स्कूल हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें भी छात्रों को जो है वातावरण से संबंधित शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और जो खास तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उन हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में बुलाकर उनसे जो है वातावरण से संबंधित समस्याओं और उनके निवारण के बारे में भी भाषण दिलवाकर छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सके हैं। इसी तरह भाइयों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सिफारिश के अनुसार भी जो अध्यापक हैं या जो विशिष्ट प्रशिक्षक हैं उनको चाहिए कि वो आगे के जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं उनको इन कार्यक्रमों, इन पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ें, और साथ ही साथ जो है पर्यावरण का जो महत्व है हमारे जीवन में उसके बारे में पर्याप्त जानकारी भी इसमें देते रहो हैं। साथ ही जो पर्यावरणीय शिक्षा है उसके माध्यम से हम अपने जो बच्चे हैं उनसे बताऊँ कि जो दैनिक जीवन में अगर हमने बदलाव लेकर आना है तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जिस तरह ऊर्जा की बचत, जब भी कमरे में कोई ना हो, लाइट, पंखे इत्यादि जो भी खाली चल रहे हैं तो उन्हें अवश्य बंद कर दें। और कम दूरी खातर अगर हमें जाना है तो कम दूरी खातर हम वाहन का इस्तेमाल ना करके पैदल ही चलें, क्योंकि ऐसा करने से एक तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दूसरा जो है पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो भी कम से कम होगी। इसके अलावा अगर हमने थोड़ा सा लंबा जाना है तो साइकिल का इस्तेमाल करें, या फिर जो है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, जिस तरह हम अपने पर्यावरण को बचा पाओगे। इसके अलावा प्लास्टिक तो जितना हो सके उससे बचाव करें, खरीदारी के लिए कपड़े हैं या जो जूट का जो थैला है उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो है हम सिंगल यूज वो जो प्लास्टिक है उससे बचें, जिसमें बोतल हैं, चम्मच हैं, पॉलीथीन है, इस तरह की चीज़ों, तो हम जितना बचें उतना बढ़िया रहेगा। तो जूट और कपड़े के जो थैले हैं, बैग हैं, उनका हम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो पानी है वो जो मीठा पानी है वो बड़ा सीमित है धरती पर, और आगे कह जाओ कि आने वाला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर ही होगा, तो पानी का बचाव करना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम ब्रश कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो उस समय अपने नल खुले ना छोड़ें, और कोशिश करें कि जो है अपने गामा में भी देखा है कि समर्सिबल है, ट्यूबवेल है, चलाया और चालदा छोड़ दिया और नाली में पानी नुए बहन लग रहा है, तो हमने कोशिश करनी कि अपने पानी का जितना उसका बचाव करना है। साथ ही जितने भी अपशिष्ट और जो कचरा है उसका भी हमने प्रबंधन करना है, और कचरे ने हम अलग अलग करके रखें, जिससे घर में जो सूखे हैं, कागज है, प्लास्टिक है, इस तरह की चीज़ें, या जो गिल्ली हैं, सब्जी फल के छिलके हैं, इन कचरे ने हमेशा अलग अलग डस्टबिन में रखें, और जो हमारे फल सब्जियों के छिलके हैं इन्हें तो हम जो है कंपोस्ट में या खाद में भी परिवर्तित आसानी तक कर सके हैं। साथ ही जो पुनर्चक्रण है यानी कि रिसाइकिलिंग है, पुरानी बोतल है, डब्बे हैं या रद्दी है, उसका पुनर्चक्रण करें, या उनका हम जो है रद्दी वाले को देकर, ताकि जो रद्दी वाला है वो उसने आगे किसी फैक्ट्री तक पहुंचा दें और उसके बाद उसका रिसाइकिलिंग हो सके। और इसके अलावा भाइयों, वायु और ध्वनि जो प्रदूषण है उस पर भी हमने नियंत्रण करना है, और स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना है। खाना पकाने के लिए लकड़ी या कोयले की जगह हम LPG गैस या सौर ऊर्जा का अगर प्रयोग करेंगे तो हम वायु प्रदूषण में कम से कम कर पाएंगे। और साथ ही जो हमारे वाहन हैं उनका भी हम अच्छे तरह रख रखाव करें, समय समय पर उनकी सर्विस करवाएं।

ताकि जो है वो कम से कम धुआं उत्सर्जित करें, पैदा करें, और पर्यावरण जो है वायु प्रदूषण जो है खासतौर पर उसमें कम करने में मदद करें। साथ ही जल संरक्षण और स्वच्छता की बात करें तो भाइयों रसायनों का कम से कम प्रयोग करें, चाहे वो हम अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका हम प्रयोग जितना कम करेंगे हमारा पानी उतना ही सुरक्षित रहेगा। साथ ही दवाइयों को फ्लश ना करें, क्योंकि जो बची हुई दवाई हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो जाए कई बार उन दवाइयों ने जो है टॉयलेट में या फिर नाली में डालते हैं, जिससे कि जो है हमारा पानी प्रदूषित हो है। साथ ही जो कारखाने हैं उनका गंदा पानी जो रसायन है वो नदियों में ना मिलावें, क्योंकि इससे जो है नदियों के ऊपर सारी जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, जीवन शैली है, हमारा जीवन है, सब नदियों पर निर्भर कर रहे हैं, और अगर नदियों में जो सीधा कचरा जाओगा औद्योगिक तो इससे जो है हमारी नदियां भी प्रदूषित होने लग रही हैं। ऐसे में भाइयों हमने चाहिए कि हम अपने आसपास, अपने घर के आसपास, हमारे जो समाज का ताना बाना है उसमें हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखें, और अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो है आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो ये तो भाइयों करी चर्चा पर्यावरणीय शिक्षा के ऊपर, और इसी के साथ भाइयों आज के ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को योग माया की प्यार भरी नमस्कार। आइए साथियों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: मंगल भवन मंगल हारी।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान, हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं गजलों से सजा कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता के तहत आइए आज सुनते हैं पंकज उदास के गाए कुछ गजल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को योग माया की प्यार भरी नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ओल्ड मूवी ज्वेल थीप की और सुनेंगे उसी के मशहूर और बहुत ही कर्णप्रिय नगमे। ज्वेल थीप जो मूवी है वो रिलीज हुई थी 1967 में। यह एक लोकप्रिय और क्लासिक हिंदी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी। इसका निर्देशन किया था विजय आनंद ने और इसे देवानंद के बैनर नवकेतन फिल्म्स के तहत बनाया गया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी देवानंद, अशोक कुमार और वैजयंती माला ने। स्पोर्ट कलाकार थे तनुजा, हेलन फरियाल और अंजू महेंदू। यह कहानी जो है एक आभूषण विशेषज्ञ विनय यानी देवानंद के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर एक कुख्यात आभूषण चोर होने का शक होता है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह पुलिस के साथ मिलकर असली चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। फिल्म के गाने बहुत ही सदाबहार हैं, जिन्हें SD बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। इसी फिल्म से गीत सुनते हैं, होठों पे ऐसी बात मैं दबाती चली आई, जो इस फिल्म का बहुत ही मशहूर गीत हुआ है।

मेरी आई खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई।

श्रोता साथियों, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यह फिल्म एक आभूषण विशेषज्ञ यानी कि देवानंद के इर्द गिर्द घूमती है, जो पुलिस के साथ मिलकर एक कुख्यात आभूषण चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी असली पहचान पूरी तरह से उलझ जाती है। एक पुलिस कमिश्नर का बेटा भी आभूषण चोर होने के संदेह के घेरे में आ जाता है। एक रहस्यमय गहने चोर देश भर में कीमती रत्नों की चोरी कर रहा है। इन दुस्साहसी अपराधों की खबरें सुर्खियों में छाई हुई है। मुंबई पुलिस आयुक्त ने बताया कि चोर फिलहाल उनके अधिकार क्षेत्र में सक्रिय है और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर वे 26 जनवरी तक अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच कमिश्नर के बेटे विनय देवानंद को जाने माने जौहरी विशंभर नाथ ने काम पर रख लिया, जो गहनों के काम में उनकी कुशलता को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। काम के दौरान विनय विशंभर की बेटी अंजलि यानी कि तनुजा के करीब आ जाते हैं और फिर फिल्म एक नया ही मोड़ लेती है और रोमांटिक तरीके से आगे बढ़ती है।

अंजलि की पार्टी में विशंभर के बचपन के दोस्त अर्जुन, अर्जुन की भूमिका में है अशोक कुमार और अर्जुन की बहन शालिनी की भूमिका में है मशहूर एक्ट्रेस विजयंती माला। गलती से वीना को शालिनी का मंगेतर अमर समझ लेते हैं। दोनों को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अर्जुन विनय और अमर की अजीब समानता को देखकर हैरान रह जाता है। फिर भी शालिनी और विनय के बीच दोस्ती हो जाती है जो प्यार में बदल जाती है। शालिनी की सगाई की अंगूठी एक चोरी हुई अंगूठी के रूप में पहचानी जाती है और कमिश्नर को शक होता है कि अमर ही वह भगोड़ा गहने चोर हो सकता है। विशंबर की दुकान में गुप्त भंडार गृह में रखे सारे के सारे गहने चोरी हो जाते हैं। फिर भी विशंबर को लगता कि उसके दुकान की जिम्मेदारी विनय को सौंपी थी, जबकि असली विनय तो अंजलि के साथ था। पुलिस का मानना है कि नकली विनय अमर था। दुकान में एक छोटा मोटा चोर पकड़ा जाता है और वह अमर की साथी हेलन के बारे में जानकारी देता है। अब विनय अमर बनकर पुलिस की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और हेलन से मिलने जाता है। वह हेलन को चकमा देता है और पता चलता है कि असली अमर तो पुणे जा रहा है। वहां विनय अमर के गिरोह के अन्य सदस्यों से मिलता है, जिनमें अमर की पत्नी जूली भी शामिल है। गिरोह के लिए वो उड़ान भरता है और एक गहने की चोरी के लिए वो पकड़ा जाता है। जूली को इसका पता चल जाता है कि विनय सिर्फ उसके पति का रूप धारण करके उसके पास आया है और अर्जुन और विनय को पता चलता है कि अमर सिक्किम राज्य के गंगटोक के लिए निकल चुका है। वहां उसकी मुलाकात अमर के एक साथी नीना से होती है और वह नीना को गिरोह से भगाने में मदद करने का वादा करता है। बदले में कुछ जानकारी चाहिए होती है उसको। हालांकि नीना विनय को गिरोह के गुप्त ठिकाने में फंसा कर पकड़वा देती है। गिरोह का असली सरगना अर्जुन निकला, जो एक गहनों का चोर है। कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और हम आपको पूरी स्टोरी भी सुनाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम आपका मनोरंजन भी कराते रहेंगे इस फिल्म के गीतों के तहत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और मैं हूं आपके साथ आप सभी की रेडियो दोस्त योग माया। तो आइए देखते हैं हमारी जो कहानी है फिल्म की उस वो किस तरह से क्लाइमेक्स की ओर जा रही है। यह एक गहने चोर गिरोह के बारे में कहानी है। गिरोह का जो असली सरगना है वो अर्जुन होता है, जो एक गहनों का चोर है। अमर नाम का कोई भी व्यक्ति कभी भी अस्तित्व में था ही नहीं। यह पहचान पुलिस को गुमराह करने और अर्जुन से ध्यान हटाने के लिए घड़ी गई थी। विशंबरनाथ भी इस सुनियोजित योजना का हिस्सा थे। जबकि शालिनी ने अपने अपहृत भाई शिशु को छुड़ाने में गिरोह की मदद की थी, वह मजबूर थी। जब वह शिशु की रिहाई के लिए अर्जुन के संपर्क में आती है तो उसे भी उसके साथ गुप्त ठिकाने में बंद कर दिया जाता है। इमारत के नीचे गुप्त रास्ते मिलने पर शालिनी विनय को बचाती है और उसे सारी स्थिति समझा देती है। तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दोबारा पकड़े जाते हैं। विनय को बिजली के झटके भी दिए जाते हैं ताकि उसकी याददाश्त मिट जाए। फिर गिरोह विनय को यह विश्वास दिलाता है कि गहने का चोर अमर ही उसकी असली पहचान है। अब उनकी योजना सिक्किम के राजसी गहनों की एक नकली चोरी करने और अमर पर दोष मढ़वाने की है, लेकिन पुलिस को बरगलाया जाएगा और वे अमर को गोली मार देंगे, जिससे असली अपराधियों पर से शक हमेशा के लिए छूट जाएगा। शालिनी राजदरबार में एक जानी मानी नर्तकी है, इसलिए यह गिरोह को नृत्य मंडली के वेश में प्रवेश कराने में मदद करती है। योजना के अनुसार अमर की मौत हो जाती है और गिरोह जश्न मनाता है। हालांकि विनय सिर्फ नाटक कर रहा होता है, उसने गिरोह की योजना के बारे में पुलिस को पहले ही गुप्त रूप से आगाह कर दिया था। अंजलि, जिसे अपने पिता की आपराधिक संलिप्तता का पता चल गया है, उसने भी पुलिस से संपर्क कर लिया है। पुलिस ने गुप्त ठिकाने को घेर लिया और विजय ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाता है। विजय अर्जुन का पीछा करते हुए उसके विमान तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन विनय अर्जुन का पीछा करते हुए जब उसके विमान तक जाता है तो वहां पर वह उसे गोली मारने की धमकी दे देता है। हालांकि अंजलि ने बंदूक से गोलियां निकाल दी थी और कमिश्नर ने आकर घोषणा की कि पूरे गिरोह को 26 जनवरी से पहले, जैसे कि वादा किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोता साथियों, कुल मिलाकर फिल्म ज्वेल थीफ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। देवानंद और वैजयंतीमाला जैसे मंझे हुए कलाकारों के अभिनय ने फिल्म को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। जी एम्बरोट को फिल्मफेयर बेस्ट साउंड अवार्ड मिला, जबकि तनुजा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला। कुल मिलाकर इसकी कहानी और गीत संगीत के हिसाब से ये उस समय की एक बहुत ही सफल फिल्म मानी जाती है।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: Thank you.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। कुछ ही देर बाद होंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल

0: टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
2: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: व्हाट्सएप एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत

0: और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे।

राजा जानी फिल्म का गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार के आप सुन रहे थे। इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: दत्ता की तर्ज थी सह लुधियानवी का लिखा ये गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल नादान तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

0: सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।
1: पर

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म याद

जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूँगा।

0: जाएंगे।
1: सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है, वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है, सुनिए।

0: परवान बन आया रे निडर, सुन सुन सुन क्या लाया खबर, गुन गुन गुन गुन गुन गुन गुन।
1: जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी, सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर।

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साये में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम चांदनी रातें के फरमाइशी गीतों के इस मस्ती भरे कार्यक्रम में आज आपकी हम सफर है आप सभी की रेडियो दोस्त योग माया। सभी श्रोता साथियों को तहे दिल से नमस्कार, आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही कार्यक्रम में। आइए बढ़ते हैं फरमाइशी गीतों की ओर और सुनते हैं पहला फरमाइशी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म द ट्रेन से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत है आर डी बर्मन का, गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के। इस गीत को सुनना चाहा है मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत, सुहानी, पंकज शर्मा, रोहित, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर और जग्गी दुआ ने। आप सभी की फरमाइश पर ये खूबसूरत गीत।

और वेस्ट बंगाल से हैं मुन्ना भगत गुटी भगत। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म परवरिश का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्नाडे ने, संगीत है दत्ताराम वाडेकर का और गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के।

श्रोता साथियों, आपका अगला फरमाइशी मैसेज हमारे पास आया है। पाकुड़ झारखंड से फरमाइश करता है हमारे उत्तम कुमार भगत, श्वेता भक्त, कीसू, तासु, अरवण, आनंद, सत्यम आनंद,

आइए सुनते हैं फिल्म आंखें से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत है रवि का, गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के। इस गीत को सुनना चाहा है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। और इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, शैलेंद्र, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षा। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा।

0: अभी
1: श्रोता साथियों, आपका अगला फरमाइशी मैसेज हमारे पास आया है गांव सीली कलां, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। फरमाइश करता है हमारे जयसिंह काम्बोज, विजयंत सिंह, रिदम निश्चय, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरोड़ी। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म याराना से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। संगीत है राजेश रोशन का और गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने।

0: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को हमने लिया है फिल्म सच्चा झूठा से। और इस गीत को सुनना चाहा है गांव व डागर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईंरा सपकाल और विशाल सपकाल। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहब, रामनिवास और धनंजय। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।
1: यूं ही तुम

श्रोता साथियों, आपका अगला फरमाइशी मैसेज हमारे पास आया है। गांव मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश, भुवेश कुमार काम्बोज। मुजफ्फरनगर यूपी से हैं राशिद मंसूरी, अयान और

जिशान मंसूरी महाराष्ट्र से हैं, संतोष खड़गे और विनोद खड़गे, और दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म हंसते जख्म से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत है मदन मोहन का और गीत के बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चांदनी रातें, और मैं हूं आपके साथ आप सबकी रेडियो दोस्त योग माया। आइए बढ़ते हैं अगले फरमाइशी गीत की ओर और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत। फिल्म है छोटी सी मुलाकात। इस गीत का संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से। फरमाइश करता है हमारे राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खत।

अगला फरमाइशी मैसेज हमारे पास आया है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। फरमाइश करता हमारे हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरबख्श सिंह। और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। आप सबने सुनना चाहा है मुकेश का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ठोकर से।

श्रोता साथियों, ये सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत। संगीत है रविंद्र जैन का। इस गीत को हमने लिया है फिल्म सौदागर से। इस गीत को सुनना चाहा है वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, मलियाना सदना मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम मुस्कान और मास्टर जीएम। उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक और अलौकिक। और कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से हैं रमेश नाचनी और भारती। मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी और गोविंदपुरा राजस्थान से हैं दातार सिंह, संगीता, कंवर, तुषार, रिंकी, रजनी। अमननगर लुधियाना से हैं एसकेपुरी, बीकेपुरी, रिशपाल, हरीश, राजू, सतीश और विनोदपुरी। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म जूली से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत है राजेश रोशन का, गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के।

इस अंतिम पेशकश के साथ ही कार्यक्रम चांदनी रातें अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त योग माया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद होंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजरायल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा